92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: तो ऑन द वन हैंड आप एक बंदे से बात कर रहे हो और फिर ऑन द अदर हैंड उस बंदे से बात करते करते यू आर वॉकिंग इन टू अ कैफे बिकॉज आपकी एक डेट भी है एंड व्हाई नॉट, चार पांच ऑप्शंस तो होने चाहिए लाइफ में, है ना.
2: द सीक्रेट बॉक्स.
1: इफ यू आर अ बिलीवर इन नॉन मोनोगमी जिसे पॉलीगमी कहते हैं और उसके बारे में कोई कन्फेशन है, हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. लेट्स गेट टॉकिंग बेबी. एंड मेरे साथ लाइन पर अभी है एक बहुत ही नॉटी बॉय जो अपने आप को कानून के चंगुल से बचाकर मुझसे फोन पर बात कर रहा है. हेलो नॉटी बॉय कॉलिंग नॉटी बॉय. हेलो नॉटी बॉय. हाय.
3: हेलो. हाय.
1: तो क्या ये सच है कि आपने अपने आप को कानून के चंगुल से छुड़वा कर मुझे फोन कॉल किया है?
3: हाँ जी, ये बिल्कुल सच है.
1: तो आप क्या मुझे इस सच्चाई पर और रोशनी डाल सकते हैं?
3: हाँ जी, मैं बताता हूँ. तो मैं और मेरी गर्लफ्रेंड, हम एक कार में थे. हाँ. सुबह हो रही थी और वो रेंटल कार थी, तो हाँ. रात की तो 4 बज रही थी. एंड हाँ. हमारे वो कार का ड्रॉप ऑफ भी 4:30 अराउंड था.
1: हाँ.
3: तो हम गाड़ी में बैठ के दारू पी रहे थे.
1: हाँ.
3: एंड हम दोनों काफी बंद थे. तो फिर हम देखते हैं दूर से एक पुलिस की कार आ रही है एंड वो रॉन्ग साइड आ रही है.
1: okay.
3: तो हमने देखा कि यहाँ से चल लेते हैं क्योंकि अगर पकड़े गए तो हम दोनों की ऐसी की तैसी हो जाएगी.
1: करेक्ट.
3: और मैंने गाड़ी चलाना स्टार्ट किया और पुलिस की गाड़ी मेरे सामने आती है और मेरे को हाथ देती है कि रुक जाओ. पर तब मैंने एक डिसीजन लिया कि नहीं. मैं नहीं रुकूंगा. मेरे अंदर का डॉन जाग गया. और मैंने वहां से गाड़ी भगाई और हमने गाड़ी की ड्रॉप ऑफ लोकेशन डाली. हम जैसे लेफ्ट राइट करते करते गाड़ी की ड्रॉप ऑफ लोकेशन पे पहुंचे और तब तक हमने वहां एक उबर बुला ली थी. तो हमने जैसे ही गाड़ी ड्रॉप करी हम एक उबर में बैठ के वहां से चले.
1: डूड, मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये है कि अगर आप एक भंड अवस्था में हैं, आपका दिमाग इतना चल रहा था कि लेफ्ट राइट ऐसे वैसे एंड लाइक नॉट अ स्क्रैच ऑन द कार या गर्लफ्रेंड पर भी. हाँ,
3: कोई स्क्रैच नहीं. अब सोचो मेरा सोबर में कितना दिमाग चलता होगा.
1: तू बहुत पानी बंदा थे को रोशिफाई कर दूं?
3: कर दो प्लीज.
1: देयर यू गो,
4: यू've बीन रोशिफाइड.
1: अगली बार या तो भंड मत होना और अगर होगे तो ऐसी जगह होना जहां कॉप्स तुम्हें चेज ना करें लाइक द डॉन. हर बार मजे नहीं आएंगे, प्रॉमिस कर रही हूं.
3: हाँ जी,
1: ऑल द बेस्ट टू यू. अगर आपकी भी जिंदगी में आपने ऐसे ही भंड अवस्था में अजीब और गरीब कारनामे किए हैं तो मेरी जान, हु विल यू कॉल एक्सेप्ट फॉर योर ब्रोशी. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो हिट मी आप ऑन इंस्टा या FB एंड व्हाइल यू डू दैट कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: exclusive diamond store.
1: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin. अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
2: अब मिर्ची खा.
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
0: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
0: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत है, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
4: रंग रेजा, रंग रेजा।

ऐ अब्रे करम थम थम के बरस, इतना ना बरस कि वो आ ना सके। जब आ जाए जम जम के बरस, इतना तू बरस कि वो जा ना सके। ये जो हसीन सा शेर है ना, ये मुझे पहली बार इस ऐसे इंसान ने सुनाया था जिससे मुझे पहली बार प्यार भी हुआ था। एंड उस समय मुझे नहीं पता था अब्रे करम क्या है, और मैंने इसे शर्माते हुए पूछा कि शेर तो अच्छा है लेकिन अब्रे करम का मतलब क्या होता है। एंड ही सेड बारिश। और इस मौसम में मुझे अपने उस पहले प्यार की याद आ गई। तो जितने भी आशिक इस दुनिया में अभी घूम रहे हैं ना, आई एम श्योर दे आर सेइंग द सेम थिंग कि पहले इतनी तेज बारिश ना हो कि हमारा लवर हमें मिलने ना आ सके, और जब आ जाए हमारे साथ हो तब इतनी जम के बारिश होना कि चाहते हुए भी वो हमें छोड़ के जा ना सके। अगर आप मेरी तरह बारिश से इंस्पायर्ड रोमांस करना चाहते हो, अगर आप मेरी तरह एक ऐसे नस कटे कर्म जले आशिक हो जिसे बारिश देख के सडनली प्यार का मूड हो जाता है, देन व्हाई डोंट यू सेंड मी योर बारिश वाली लव स्टोरी ऑन इंस्टा या FB। आई टोटली वॉन्ट टू हियर दैट राइट नाउ। एंड व्हाइल यू डू दैट, कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: फाइनली मेरी जिंदगी में एक लड़की आई है जिससे मुझे बहुत मोहब्बत है. शी इज अ वर्गो. आई रियली वॉन्ट टू प्लीज हर. मैं चाहता हूँ कि मैं उसका बेस्ट बॉयफ्रेंड बनूँ. ऑल दो मैं उसका सिर्फ दूसरा बॉयफ्रेंड हूँ, बट स्टिल आई वॉन्ट टू बी अनफॉरगेटेबल इन हर लाइफ. हाउ डू आई मेक श्योर दैट माई वर्गो गर्लफ्रेंड फाइंड्स मी सो चार्मिंग कि उसे सिर्फ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत हो.
2: रोशी के डीएम से.
1: सच अ क्यूट डीएम ध्रुव, यू आर सच अ डार्लिंग. वेल फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट मी टेल यू, पहले तो आई एम अ वर्गो माइसेल्फ. दूसरा, मैंने काफी एस्ट्रोलॉजी पढ़ ली है टू फाइनली गेट अ ग्रिप ऑन ऑल थिंग्स एस्ट्रोलॉजिकल. और मैं आपको वर्गोस के बारे में एक चीज बता सकती हूँ, दे लव टू प्लीज देयर पार्टनर. तो अगर आप उन्हें अपने लिए कोई चीजें करने दोगे, जैसे गोइंग एंड बाइंग समथिंग फॉर यू और मे बी कुकिंग फॉर यू और मे बी गिविंग यू अ फुट मसाज, दे विल लव दैट बिकॉज वर्गोस को अच्छा लगता है व्हेन देयर इन द सर्विस ऑफ द अदर पर्सन. दूसरा, वर्गोस आर वेरी हार्ड टू प्लीज. लेकिन एक आपको ट्रिक बताऊं, If you want to get dirty with a Virgo, get clean. अगर एक चीज है जो यूनिवर्सली हर वर्गो लड़की को और लड़के को पसंद है, दैट इज क्लीनलीनेस. तो अगर आप स्पार्कलिंग क्लीन हो, आपके दांत चमक रहे हैं, आप दिन में दो बार नहाते हो, आप उसके घर जाके डस्टिंग कर देते हो, आई मीन फॉर मी दैट्स अ रियल टर्न ऑन, देन दैट विल टर्न ऑन योर वर्गो गर्ल एज वेल. एंड ऑनेस्टली आई थिंक कि वर्गोज अप्रिशिएट ऑथेंटिसिटी. तो अगर आप एक ऑथेंटिक इंसान हो, शी विल लव यू फॉर श्योर डार्लिंग. और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसे ही कोई सवाल है दैट्स बॉदरिंग यू and you need to ask somebody, why don't you hit me up? Mera naam hai Mirchi Roshi.

0: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
1: द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ऑफर्स वेरियस डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशंस इन फार्मेसी टेक, मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग, EKG एंड फ्लेबोटमी, मेडिकल असिस्टेंट एंड मेनी मोर इन डिमांड हेल्थ केयर करियर्स।
0: गेट क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड जॉब असिस्टेंस एट द मोस्ट रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल सेंटर्स। ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड ऑनलाइन एंड ऑन कैंपस। फॉर एनरोलमेंट कॉल 9088222002 और विजिट aimseducation.edu.
2: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.

0: मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए। 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में। सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
1: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
2: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
3: Tera kya hoga, Kalya?
4: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
3: Ab mirchi kha.
5: Radio Mirchi. It's hot.

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: होगा कालिया।
1: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: यार मैं अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करना चाहता हूँ बिकॉज ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता है कि इस रिलेशनशिप में आई फील द सेम काइंड ऑफ लव दैट माय गर्लफ्रेंड डज बट मैं डरता हूँ कि मैं उसका दिल ना तोड़ दूँ ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए रोशी
2: रोशी के डीएम से
1: सबसे पहले तो भूषण यू आर सच अ स्वीट हार्ट कि आपने इतनी ओपनली ये लिख दिया दैट इस रिलेशनशिप में आप शायद अपनी गर्लफ्रेंड से कम इन्वॉल्व्ड हो कम इन्वेस्टेड हो एंड यू डोंट वांट टू हर्ट हर लेकिन उसे ये कहकर दैट आप ब्रेकअप चाहते हो यू माइट अगेन बी हर्टिंग हर सो व्हाट इज द वे आउट स्वीट हार्ट सबसे पहले तो वी हैव टू ऑनर अ रिलेशनशिप हमें एक रिलेशनशिप को रिस्पेक्ट देनी चाहिए और कई बार रिस्पेक्ट सच्चाई में होती है टू टेल द पर्सन ऑनेस्टली कि आप कैसा महसूस करते हो हाँ मैं समझ रही हूँ कि आपको बहुत खराब लग रहा है कि कहीं आप उसका दिल ना तोड़ दो बट अगर आप उसका दिल नहीं तोड़ोगे उसे सच बताकर उसे इस झूठे डिलूजन में रखना भी तो ठीक नहीं है कि आप उसे उतना ही प्यार करते हो जितना कि वो आपको इससे बेहतर तो है कि आप उसे सच बता दो सो दैट शी इज फ्री टू मेक हर ओन चॉइसेस इसे जानने के बाद वो रिलेशनशिप में रहना चाहती है नहीं रहना चाहती है एटलीस्ट शी विल मेक अ चॉइस बेस्ड ऑन नोइंग द फैक्ट्स अभी तो उसे यही लगता है ना कि आप इस रिलेशनशिप में उतना ही इन्वेस्टेड हो जितना कि वो विच इज नॉट ट्रू और अगर आप ये बात इतने प्यार से मुझे समझा सकते हो आई अंडरस्टैंड कि आपकी गर्लफ्रेंड की फीलिंग्स इन्वॉल्व होंगी इसमें बट समवेयर यू विल बी रिस्पेक्टिंग द पर्सन एंड यू विल बी ऑनरिंग द रिलेशनशिप एंड द सिचुएशन दैट यू आर इन और आपके अंदर जो भी गिल्ट है ना वो अपने आप रिलीज हो जाएगा जैसे ही आप अपनी गर्लफ्रेंड को सच्चाई बताओगे मे बी यू गाइज कैन वर्क अ वे अराउंड इट बट ये सब करने के लिए ना भूषण आपको उससे उतनी ही ऑनेस्टली बात करनी होगी जितनी ऑनेस्टली आपने मुझसे बात की है इसे ट्राई करके देखो यू हैव ऑल ऑफ माई लव एंड ऑल ऑफ माई बैकिंग एंड इफ यू वॉन्ट आई बी हैप्पी टू स्पीक टू द बोथ ऑफ यू टूगेदर ऑल्सो और वो करने के लिए यू जस्ट हैव टू सेंड मी योर नंबर्स एंड आई कॉल यू और भूषण की तरह अगर आपकी भी जिंदगी में कोई भी भाषण है वाई डोंट यू हिट मी अप ऑन इंस्टा या एफ बी एंड वी विल गेट टॉकिंग मेरा नाम है मिर्ची रोशी नाम की स्पेलिंग है ROCHIE सो डू व्हाटएवर यू हैव टू डू लेकिन कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना सुनते रहो मिर्ची इट्स हॉट

0: only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: आपको लो की एंजाइटी हो रही है अबाउट आपके बे को आप पसंद हो या नहीं. आई टोटली गेट दैट, क्योंकि जब से आई हैव स्टार्टेड क्रशिंग ऑन दिस न्यू गाय जो हमारी कॉलोनी में आया है, मैं सारे टाइम घर से बाहर निकलने के पहले ये सोची होती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ, जस्ट इन केस वो अपने डॉग को वॉक करा रहा हो और हम दोनों एक दूसरे से बात करने लग जाएं. आई होप आई एम लुकिंग क्यूट AF. इसीलिए मैंने कलर थेरेपी का बेसिक प्रिंसिपल यूज़ किया है एंड एवरी टाइम आई स्टेप आउट ऑफ द हाउस मैं सारे टाइम काले कपड़े पहनकर निकलती हूँ. The thing is कि काले कपड़े ना they make you look sexy and mysterious and really lean and very athletic. और I think ऐसी look is something that I'm always hoping for, especially जब मेरा crush मुझे देखे. इसे काला जादू कहते हैं for a reason. काला really really works. और अगर आप भी अपने crush को, बे को या partner को impress करना चाहते हो, the best bet is to use black. तो वो जो plain black shirt थी ना जो आपने last year trash कर दी थी कि यार ये कौन पहनेगा, try tucking it in your jeans. I think it's going to look hot AF. और एक बार आपका crush आपको notice करे, जैसे I'm hoping मेरा crush मुझे notice करे, I think हमें notes compare कर लेने चाहिए. And to do that, you can hit me up Insta पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की spelling है ROCHIE. So do whatever you have to do. लेकिन कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: तो ऑन द वन हैंड आप एक बंदे से बात कर रहे हो और फिर ऑन द अदर हैंड उस बंदे से बात करते करते यू आर वॉकिंग इनटू अ कैफे बिकॉज आपकी एक डेट भी है एंड व्हाई नॉट, चार पांच ऑप्शंस तो होने चाहिए लाइफ में, है ना?
2: द सीक्रेट बॉक्स.
1: इफ यू आर अ बिलीवर इन नॉन मोनोगमी जिसे पॉलीगमी कहते हैं और उसके बारे में कोई कन्फेशन है, हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. लेट्स गेट टॉकिंग बेबी. एंड मेरे साथ लाइन पर अभी है एक बहुत ही नॉटी बॉय जो अपने आप को कानून के चंगुल से बचाकर मुझसे फोन पर बात कर रहा है. हेलो नॉटी बॉय कॉलिंग नॉटी बॉय. हेलो नॉटी बॉय. हाय.
3: हेलो. हाय.
1: तो क्या ये सच है कि आपने अपने आप को कानून के चंगुल से छुड़वा कर मुझे फोन कॉल किया है?
3: हाँ जी, बिल्कुल सच है.
1: तो आप क्या मुझे इस सच्चाई पर और रोशनी डाल सकते हैं?
3: हाँ जी, मैं बताता हूँ. तो मैं और मेरी गर्लफ्रेंड, हम एक कार में थे. सुबह हो रही थी और वो रेंटल कार थी, तो हाँ. रात की कुछ 4 बज रही थी एंड हाँ. हमारे वो कार का ड्रॉप ऑफ भी 4:30 अराउंड था
1: हाँ.
3: तो हम गाड़ी में बैठ के दारू पी रहे थे
1: हाँ.
3: एंड हम दोनों काफी बंद थे
1: हाँ.
3: तो फिर हम देखते हैं दूर से एक पुलिस की कार आ रही है एंड वो रॉन्ग साइड आ रही है.
1: ओके.
3: तो हमने देखा कि यहाँ से चल लेते हैं क्योंकि अगर पकड़े गए तो हम दोनों की ऐसी की तैसी हो जाएगी.
1: करेक्ट.
3: और हम मैंने गाड़ी चलाना स्टार्ट किया और पुलिस की गाड़ी मेरे सामने आती है और मेरे को हाथ देती है कि रुक जाओ
1: हाँ.
3: पर तब मैंने एक डिसीजन लिया कि नहीं
1: हाँ.
3: मैं नहीं रुकूंगा
1: हाँ.
3: मेरे अंदर का डॉन जाग गया
1: हाँ.
3: और मैंने वहां से गाड़ी भगाई और हमने गाड़ी की ड्रॉप ऑफ लोकेशन डाली. हम जैसे लेफ्ट राइट करते करते गाड़ी की ड्रॉप ऑफ लोकेशन पे पहुंचे और तब तक हमने वहां एक उबर बुला ली थी
1: हाँ.
3: तो हमने जैसे ही गाड़ी ड्रॉप करी

0: जाओ आ जाओ, आगरा वाले, दिल्ली वाले, मुंबई वाले, चेन्नई वाले, इंदौर वाले, जो भी जहाँ से भी है, सबके लिए डिस्काउंट है डिस्काउंट।
1: शो स्ट्रीट वाला है पर ऑफर एलीट वाला है, रास्ता चाहे जो हो, मंजिल है विरानी ज्वेलर्स, क्योंकि वहाँ मिल रहा है 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी।
2: विजिट viranijewelers.com, गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल फ्रॉम 4 जुलाई इंडिपेंडेंस डे टिल ऑगस्ट 15th इंडिपेंडेंस डे, सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
3: ओनली ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, इट्स हॉट।
4: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
5: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
4: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
6: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
4: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
7: एक ही होता है।
4: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: किसी दिग्गज इंसान ने मुझे एक बार कहा था कि जब तुम प्यार करो तो इसलिए प्यार मत करना कि इस इंसान से मैं शादी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ या नहीं, बट प्यार इसलिए करना क्योंकि तुम्हें सच में उस इंसान से मोहब्बत है। जब हमें किसी से प्यार होता है ना, तब ऑटोमेटिकली वो एंड गेम शादी में बदल ही जाता है। लेकिन जब हम किसी से ये सोच के प्यार करते हैं कि यार ये बंदा सारे बॉक्सेस टिक कर रहा है, इससे शायद एक साल में शादी कर भी लेंगे, अगर ऐसा हो भी जाए ना, तो आपकी शादी तो ऑसम होगी, आई होप एंड प्रे, लेकिन उसमें प्यार हमेशा बैकसीट लेगा क्योंकि आपने वो रिलेशनशिप कभी प्यार के लिए शुरू ही नहीं किया था। मुझे याद नहीं आ रहा मुझे किसने ये एडवाइस दी थी यार, बट जिसने भी दी थी ना ये एडवाइस, मैं जिंदगी में एडवाइस कभी नहीं भूलूंगी, देने वाले का नाम ऑलरेडी भूल चुकी हूँ। आपको क्या लगता है कि क्या हमें प्यार सिर्फ प्यार के लिए करना चाहिए या इन 2022 प्यार के आगे भी और चीज़ें होती है जिसके बारे में सोचना चाहिए बिफोर वी गेट इन टू अ रिलेशनशिप? आप इसके बारे में जो भी सोचते हो ना, डोंट फॉरगेट टू टेल मी ऑल अबाउट इट इंस्टा पर या FB पर। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHI।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burka, burka. La vipa la burka. Mirchi, burka.
2: हेलो
3: गुड इवनिंग मिस्टर श्रीवास्तव, मैं मॉडर्न स्कूल से बोल रहा हूँ, आपके बेटे के स्कूल से। हाउ आर यू?
2: आई एम वेरी फाइन, थैंक यू।
3: अतुल वैसे पढ़ाई लिखाई में यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिल्कुल आगे नहीं है।
2: आई नो, वो खेल में कुछ ऐसा है नहीं खास ज्यादा। हाँ,
3: नहीं वही मैं आपको बताना चाह रहा था। अच्छा मिस्टर श्रीवास्तव, क्योंकि हम 26 जनवरी पे एक फंक्शन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पेरेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करें। पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा परफॉर्म वो करेंगे उसके मार्क्स बच्चे को दिए जाएंगे। यू नो,
2: परफॉर्म मतलब क्या, परफॉर्म क्या करना होगा हमको?
3: कुछ भी ऐसा करिएगा जो कि बच्चों की चीज हो। आप प्लीज आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करिए। आप आओ मिलो शिलो शालो करिए ना यहाँ पे आके स्टेज पे।
2: गेम है क्या?
3: आओ मिलो शिलो शालो,
2: पेरेंट्स को परफॉर्म करना होगा?
3: वो सिर्फ आप ही को परफॉर्म करना होगा, आप ही को ये पूरा बोलना होगा आओ मिलो शिलो शालो। एक्चुअली प्रॉब्लम भी है, हमारे पास चार ही थे उसमें से यही बचा है। आओ मिलो शिलो शालो अगर आप ले सकते हैं तो आप इसे प्लीज परफॉर्म कर लीजिए ताकि उसके मार्क्स अच्छे आए। राइट,
2: पूरी कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट।
3: देखिए शुरू ऐसे होता है, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। राइट, और इसमें बीच में ना क्लैप करना होता है इस तरह। आओ मिलो,
2: आओ मिलो
3: शिलो शालो,
2: शालो
3: कच्चा धागा,
2: कच्चा धागा
3: रेस लगा लो,
2: रेस लगा लो,
3: दस पत्ते तोड़े,
2: दस पत्ते तोड़े,
3: एक पत्ता कच्चा,
2: एक पत्ता कच्चा।
3: इसको ना प्रैक्टिस करिएगा, आप तेज़ से बोलेंगे, दस पत्ते तोड़े,
2: तोड़े
3: या मिस्टर श्रीवास्तव, दस पत्ते तोड़े, दस पत्ते तोड़े,
2: दस दस दस पत्ते तोड़े,
3: हिरण का बच्चा, हिरण का बच्चा, सब हिरण का बच्चा,
2: ओके ओके सॉरी सॉरी, हिरण का बच्चा,
3: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू,
2: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू,
3: श्रीवास्तव बोले कुकड़ू को, मिस्टर श्रीवास्तव बहुत अच्छा लगता है जब बाप कोई बच्चा बनने की कोशिश करता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आपकी वाइफ ने मुझे नंबर दिया था, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया है।
2: यार ये कोई सुनेगा?
3: सर ये सर ये सब सुन चुके हैं। अब प्यार से एक बार बोल दीजिए, इसको रिपीट कर लीजिएगा, बार बार बोलिएगा कुकड़ू को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: ओ चन्नती कुड़ी, ओ चन्नती कुड़ी।

नीतू जट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकाली पंग होगी।

0: ताजा खबर देसी न्यूज विदेशी न्यूज पड़ोसी की न्यूज ब्रेकिंग न्यूज ले लो।
1: श्योर स्ट्रीट वाला है पर ऑफर एलीट वाला है क्योंकि सबसे बड़ी खबर है विरानी ज्वेलर्स स्पेशल फ्रीडम सेल। पुराना गोल्ड लाओ और 100% एक्सचेंज वैल्यू ले जाओ। नो लॉस ओनली प्रॉफिट।
2: विजिट viranijewelers.com। गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल फ्रॉम 4 जुलाई इंडिपेंडेंस डे टिल ऑगस्ट 15th इंडिपेंडेंस डे। सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम।
3: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। It's hot.
4: लिसनर है मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2 इट्स हॉट Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
1: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड।
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ।

0: वाह वाह वाह वाह रफी साहब, वाह वाह वाह वाह। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये गाने से जो आपने पर्दा उठाया है,
1: गजब ढा दिया है, गर्दा उड़ा दिया है।
2: अच्छा रफी साहब का बचपन ना अमृतसर जिले के कोटला सुल्तान सिंह गांव में बीता है, जहाँ उनका जन्म भी हुआ था।
0: उनका निकनेम था फीको, हाउ क्यूट। और तब उनकी सिंगिंग की शुरुआत पता कैसे हुई? उनके गांव में एक फकीर अक्सर घूमता था और कुछ कुछ गाता रहता था, और ये छोटा सा फीको उनको मिमिक करने की कोशिश करता था, उनके जैसे गाता था। इसीलिए शायद तभी से ये सीधा साधा फकीर बंदा रह गया था।
2: रफी साहब की नेक दिली, दरिया दिली के बहुत सारे किस्से। फिलहाल तो उनकी आवाज में किस्सा उन आँखों का, जिनके सिवा दुनिया में रखा क्या है।
0: पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी चीज विद चारू ओनली ऑन मिर्ची मिर्ची
1: हेलो,
2: कुड आई स्पीक टू कोमल प्लीज?
1: स्पीकिंग
2: कोमल, हाय आई एम रवि। हमारी कंपनी ने एक्चुअली ईव टीजिंग को लेके दिल्ली में जो लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है, लड़कियों को परेशान करते हैं, उसके खिलाफ एक इनिशिएटिव शुरू किया है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपको खुद कोमल को ये लगता है कि दिल्ली में लड़कियों को छेड़ा जाता है, लड़कियाँ बहुत इनसिक्योर हैं?
1: लगता है क्या है, बिल्कुल ऐसा है।
2: ओके,
1: हम लोग निकल नहीं सकते हैं, हम लोग इनसिक्योर हैं। इधर से कमेंट पास होते हैं, उधर से बसेस में हमारा ट्रेवल करना मुश्किल है।
2: राइट,
1: इनफैक्ट मैं अपना एक केस बताना चाहती हूँ। मैं किसी काम से साकेत गई थी शाम को।
2: ओके,
1: मतलब थोड़ी रात सी हो गई थी।
2: हाँ।
1: तो वहाँ मुझे छेड़ा।
2: कितने बजे गई थी आप?
1: 10:30 बजे।
2: 10:30 बजे क्यों गई थी आप? 10:30 बजे
1: मेरे को एक काम था वहाँ पे।
2: किस तरह का काम पड़ गया था आपको 10:30 बजे, जो आपको इतनी हड़बड़ाबड़ में अकेले जाना पड़ गया?
1: मुझे बड़ी जरूरी काम
2: नहीं, कितना आपको मालूम है ईव टीजिंग को लेकर कितना हम परेशान हैं, लड़कियां छेड़ रही हैं। आप निकल गई 10:30 बजे वहाँ पे, आपको खुद को पता है आप क्या कर रही हैं?
1: एक सेकंड, आप तो गुस्से में हो रहे हैं।
2: गुस्से में नहीं, गुस्से की बात मेरी बात सुनिए आप लड़कों को बुरा कहती हैं। आप क्यों गई थी वहाँ पे 10:30 बजे?
1: आप एडवाइज, ये खुद गुस्से में हो रहे,
2: खुद गुस्से में आप क्यों गई 10:30 बजे?
1: आप हद से ज्यादा टीजिंग
2: क्या बात कर रहे हैं?
1: मेरे को ईव टीजिंग कर रहे हैं।
2: ईव टीजिंग मैं आपको करूँ? आप आगे बढ़ रही है बहुत ज्यादा। मैं एक इनिशिएटिव शुरू कर रहा हूँ,
1: नहीं कर सकते आप।
2: मैं एक इनिशिएटिव शुरू कर रहा हूँ जिसको लेके हम चाहते हैं कि लड़कियों की सुरक्षा और लड़कियों को कमेंट पास ना करें, लड़कियों
1: की सुरक्षा की बात की।
2: किस तरह की? नहीं, आप किस तरह की बात कर रही है? 10:30 बजे क्यों गई आप? सागर फोन रखिए आप, बेकार की बात। हेलो
1: हेलो,
2: कुड आई स्पीक टू कोमल? कोमल हाय, हम ईव टीजिंग को लेकर।
1: ओके ओके ओके
2: ओके ओके ओके, मेरी बात सुनिए। कोमल, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, पूरी दिल्ली आपको सुन रही है। मैंने मुर्गा बनाया है, छोटा सा मजाक किया था आपके साथ। आप साकेत क्यों कहीं नहीं 10:30 बजे?
1: मिस्टर, ये आप हैं जो मेरे को गुस्सा दिलाया, किसी दिन आपको पकड़ के ना ठीक करना पड़ेगा।
2: चलिए मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ूंगा, मेरा मतलब मैं छेड़ता भी नहीं हूँ। मेरे साथ जरा हंस के बोल।
1: ओके, कुकड़ू कू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
4: इट पटाक
3: मिर्ची।
5: इसका बना उसका बना सबका बना,
4: क्या बना?
5: मुर्गा मुर्गा नवेद वाला मुर्गा,
4: मिर्ची मुर्गा।
6: हेलो
7: हेलो हेलो
6: भैया, आवाज साफ नहीं आ रही। कम आ रही आवाज?
7: भाई साहब, आपकी दुकान से कल एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन ले गया था, याद है आपको?
6: हाँ जी,
7: आपकी दुकान से एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन लेके गया था मैं कल।
6: अच्छा अच्छा,
7: तो ये यार, ये ड्रिल मशीन कैसे दिए? ये बहुत आवाज कर रही है, एक सेकंड रुको।
6: भाई ड्रिल मशीन तो आवाज तो करेगी यार।
7: एक सेकंड यार, आवाज करेगी। आप ये बंद कर, इसको बंद कर। रमेश इसे बंद कर दे यार, आप मरवाओगे, ड्रिल मशीन आवाज करेगी, आज सारे जाग जाएंगे तिजोरी खुलने से पहले।
6: मैं
7: आपको यही बता रहा हूँ, ये ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे जो मैं ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना, ये जिस कोठी में आया हुआ हूँ अभी, इनकी तिजोरी खुली भी नहीं है। मैं तो ये ड्रिल मशीन यार, इसको बंद कर दे रमेश, बंद कर दे। भाई साहब ये तिजोरी मैं खोल रहा हूँ, ये आवाज बहुत कर रही है यार।
6: क्या कह रहे हो, तिजोरी ड्रिल मशीन कर क्या रहे हो आप?
7: इनके घर की चोरी कर रहा हूँ, खोपड़े में बात नहीं आती क्या तेरे यार? मुझे फंसवाएगा तू?
6: तो ड्रिल मशीन हमारे लेके तो चोरी करने गया।
7: एक तो आवाज इतनी दी है तूने ड्रिल मशीन के, सारे जाग जाएंगे यार।
6: चोरी करने के लिए
7: तुमने पहले क्यों नहीं बताया?
6: यहाँ पे ड्रिल मशीन से है कौन? तू खुद चोरी कर रहा, मुझे फंसवाएगा।
7: मेरी बात सुन,
6: मुझे मरवाएगा, मुझे फोन कर दिया।
7: बात सुन।
6: हेलो
7: यार, कमाल है आप तो, मेरी रोजी फिर रात मार रहे हो।
2: सर मेरी बात सुनिए, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपकी दुकान का नंबर मुझे किसी ने दिया था, आप रेडियो मिर्ची में हैं, सब आपको सुन रहे हैं, आपके साथ मजाक किया है, मुर्गा बना दिया आपका।
6: कहाँ से बोल रहे भैया?
2: रेडियो मिर्ची से सर, आपके साथ मजाक किया है मैंने। जरा हंस के मेरे साथ एक बार।
7: अब ठीक है।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
4: इट पटाक।
8: तेरा क्या होगा कालिया?
9: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
8: अब मिर्ची खा।
10: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
11: आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ,
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: बेटा बात है ये 1985 की।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ।
0: 85 बोले तो
1: 1985। सो 1985 में फिल्म फेयर अवार्ड्स जब हुए थे तो बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर की कैटेगरी में जितने भी नॉमिनेशन थे वो किशोर कुमार के थे और एक ही फिल्म के चार गानों के लिए वो नॉमिनेटेड थे। ये फिल्म थी शराबी और गाने थे दे दे प्यार दे, लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, मंजिलें अपनी जगह है एंड इंतहा हो गई इंतजार की। मतलब सारे नॉमिनेशन किशोर कुमार के एंड नो प्राइजेस फॉर गेसिंग कि किसको अवार्ड मिला है। बट किस गाने के लिए मिला, जिस गाने के लिए मिला वो हम यहाँ पे सुनेंगे। प्रकाश मेहरा साहब का लिखा हुआ, बप्पी लहरी की कॉम्पोजिशन, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @RJ.Charu, RJ.CHARU। सुनते रहिए मिर्ची।

0: मैजिक। मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए। 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में। सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
1: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
5: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

0: कादर खान साहब के साथ एक चीज बहुत होती थी।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। कुछ इंटरेस्टिंग किरदार वो ऐसे लिखते थे कि उनको ही वो रोल निभाने को कह दिया जाता था। उनकी जर्नी एज अ कॉमेडियन इसी तरह से शुरू हुई थी। सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
2: मद्रास की हिम्मत वाला सर, वो मुझे स्क्रिप्ट मिली, मैंने अजीब अंदाज में लिखा उसको, और मैं मिला यार ये मेरे डायरेक्टर इसको पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने रिकॉर्ड करके पूरी स्क्रिप्ट दे दी इनको। अब डायरेक्टर ने पढ़ा, साथ में कैसेट लगाया, रात भर वो आदमी सुनता रहा, और उसके बाद प्रोड्यूसर को सुबह बुलाया, दोपहर को फ्लाइट पकड़ के दोनों बम्बई पहुंचे। मैं कहीं शूटिंग कर रहा था, अरे बोले सर आप यहाँ, बोले हाँ ये क्या है, तुम क्या लिखा है, ये कौन करेगा ये रोल मुनीम का, यू हैव टू डू दैट रोल। और वो फिल्म में मैंने मुनीम का रोल किया, तो एक हफ्ते तक तो जितेंद्र और श्रीदेवी के तमाम जगह बैनर्स लगे हुए थे, एक हफ्ते के बाद सिर्फ कादर खान के बैनर लगे हुए थे, और यहाँ से मेरी कॉमेडी का ट्रैक चला।
0: पहले ये ना डिसाइड करना मुश्किल हो जाता था कि खान साहब एक अच्छे राइटर थे या एक्टर, एक्टिंग में भी विलन ज्यादा अच्छे थे या कॉमेडियन, सभी में टू गुड थे यार। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। पुरानी जीन्स विद चारू ओनली।

0: रेखा का मिड 80s का एक बहुत ही पॉपुलर इंटरव्यू है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इस इंटरव्यू में जब उनसे उनकी हॉबीज के बारे में पूछा गया तब सुनिए उन्होंने क्या कहा।
1: मुझे पेंटिंग का बहुत शौक है और गार्डनिंग का शौक है, इंटीरियर डेकोरेशन का शौक है और कपड़ों का शौक है, मतलब डिजाइन करने का शौक है, मेकअप का तो शौक है ही, ये तो सब जानते हैं। एंड आई लाइक लुकिंग एट प्रिटी फेसेस, और हेयर स्टाइल्स का शौक है, एवरीथिंग ब्यूटीफुल, जो भी खूबसूरत चीज़ है जैसे फ्लावर अरेंजमेंट, एनीथिंग यू जस्ट नेम इट, वो सब कुछ करना चाहती हूँ मैं। ऑफकोर्स सबसे ज्यादा मैं फिल्म बनाना चाहती हूँ।
0: वेल, बीच में रेखा के एक फिल्म बनाने की बातें हुई थी लेकिन ये मटेरियलाइज नहीं हो पाया। इसी इंटरव्यू में इनसे ये भी कहा गया कि काफी लोग ये कह रहे हैं, उनकी ये राय है, सलाह है कि अब रेखा को सेटल हो जाना चाहिए। इस बारे में सुनिए उन्होंने क्या कहा।
1: बहुत से लोग बहुत सी राय देते हैं लेकिन हम जो चाहते हैं वो हम करेंगे, राय सुनते हैं लेकिन अल्टीमेटली जो हम वही करते हैं जो हम चाहते हैं, और इस वक्त हम शादी करना नहीं चाहते।
0: Well, इसके बाद 1990 में रेखा ने शादी की थी लेकिन वो उनकी लाइफ का एक मेजर सेटबैक बन गया। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

गाना है पड़ोसन फिल्म का। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इसका वीडियो भी बड़ा मस्त है, 12-13 लड़कियाँ ऐसे मजे में साइकिल चला रही हैं और गाना गा रही हैं। और काफी जगह इस गाने में मुझे ऐसा लगा कि सायरा बानो जी जो इस गाने जिन पर ये गाना मेनली पिक्चराइज्ड है वो शायद साइकिल चला ही नहीं रही है, उनके लिए कोई दूसरा कोई डबल वो साइकिल चला रहा है, खास करके जहाँ जहाँ उनका क्लोजअप लिया गया है ऐसा मुझे लगा। बाकी काफी जगह लगा भी कि वो चला रही हैं। एनीवे मैं इसका वीडियो जब देख रही थी ना तो यूट्यूब के कमेंट्स में एक कमेंट था कि ये मैसूर के कृष्ण राजा सागर डैम का जो आसपास का एरिया है वहां पे गाना शूट हुआ है और आज की डेट में भी वो जगह जो है उतनी ही खूबसूरत है जितनी की इस गाने की वीडियो में दिख रही है, मतलब उसको इतने अच्छे से मेंटेन करके रखा गया है। ये हुई ना बात, और बातों पे फिलहाल ब्रेक, मतलब कि म्यूजिकल ब्रेक। हम सुनेंगे एक रोमांटिक गाना, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची

0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची
1: हेलो
2: गुड इवनिंग मिस्टर श्रीवास्तव, मैं मॉडर्न स्कूल से बोल रहा हूँ, आपके बेटे के स्कूल से। हाउ आर यू?
1: थैंक यू
2: अतुल। वैसे पढ़ाई लिखाई में यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिल्कुल आगे नहीं है।
1: आई नो, वो खेल में कुछ ऐसा है नहीं खास ज्यादा।
2: हाँ, नहीं वही मैं आपको बताना चाह रहा था। अच्छा मिस्टर श्रीवास्तव, क्योंकि हम 26 जनवरी पे एक फंक्शन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पेरेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करें। पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा परफॉर्म वो करेंगे उसके मार्क्स बच्चे को दिए जाएंगे। यू नो,
1: परफॉर्म मतलब क्या, परफॉर्म क्या करना होगा हमको?
2: कुछ भी ऐसा करिएगा जो कि बच्चों की चीज हो। आप प्लीज आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करिए। आप आओ मिलो शिलो शालो करिए ना यहाँ पे आके स्टेज पे।
1: मतलब ये कोई गेम है क्या? ये
2: आओ मिलो शिलो शालो,
1: मतलब पेरेंट्स को परफॉर्म करना होगा?
2: वो सिर्फ आप ही को परफॉर्म करना होगा, आप ही को ये पूरा बोलना होगा आओ मिलो शिलो शालो। एक्चुअली प्रॉब्लम भी है, हमारे पास चार ही थे उसमें से यही बचा है। आओ मिलो शिलो शालो अगर आप ले सकते हैं तो आप इसे प्लीज परफॉर्म कर लीजिए ताकि उसके मार्क्स अच्छे आए। राइट, देखिए शुरू ऐसे होता है, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। राइट, और इसमें बीच में ना क्लैप करना होता है इस तरह।
1: आओ मिलो
2: शिलो शालो,
1: कच्चा धागा
2: रेस लगा लो,
1: रेस लगा लो,
2: दस
1: पत्ते तोड़े
2: एक पत्ता कच्चा,
1: एक पत्ता कच्चा।
2: इसको ना प्रैक्टिस करिएगा, आप तेज़ बोलेंगे। दस पत्ते तोड़े
1: तोड़े
2: या मिस्टर श्रीवास्तव, दस पत्ते तोड़े, दस पत्ते तोड़े,
1: दस दस दस पत्ते तोड़े,
2: हिरण का बच्चा, हिरण का बच्चा, सब हिरण का बच्चा।
1: ओके ओके, सॉरी सॉरी, हिरण का बच्चा।
2: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू,
1: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू,
2: श्रीवास्तव बोले कुकड़ू को,
1: श्रीवास्तव
2: बहुत अच्छा लगता है जब बाप कोई बच्चा बनने की कोशिश करता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, आपकी वाइफ ने मुझे नंबर दिया था, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया है।
1: यार ये कुछ सुनेगा
2: सर, ये सर ये सब सुन चुके हैं। अब प्यार से एक बार बोल दीजिए, इसको रिपीट कर लीजिएगा, बार बार बोलिएगा कुकड़ू को।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट पटाक। लिसनर है, मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Purani Jeans with Charu. Only on.

उफ उफ, आई जस्ट लव दिस सॉन्ग। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाज, आर डी बर्मन की कॉम्पोजिशन, आनंद बख्शी का लिखा हुआ, फिल्म का नाम राजा रानी। और वैसे भी ना मुझे वो गाने बहुत पसंद हैं जिसमें ऐसे राजा रानी का जिक्र होता है। जैसे याद करे तो अभी तो मुझे 90s के गाने याद आ रहे हैं, राजा को रानी से प्यार हो गया, या किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी। एक्चुअली एक शेर भी है मेरे पास राजा रानी वाला, नाजिर वहीद नाम के शायर हैं, इनका शेर है कि लिखते लिखते ही लड़ी आंख जो रानी से मेरी, लिखते लिखते ही लड़ी आंख जो रानी से मेरी, फिर तो राजा को निकलना था कहानी से मेरी। चलिए एक और गाना सुनते हैं जहाँ पे रानी अपने राजा को पुकार रही है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए। 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में। सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
1: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
2: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
2: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
2: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
5: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली।

1973 की फिल्म ब्लैकमेल का ये सुपरहिट गाना मिर्ची सुन रहे हैं आप। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। गाना सुपरहिट है लेकिन पिक्चर खास चली नहीं थी, जिसकी वजह ये कही जाती है कि तब तक धर्मेंद्र साहब ही मैन एक्शन हीरो के तौर पे एस्टैब्लिश हो चुके थे, लेकिन उनका ये वाला रोल पूरा रोमांटिक। और शत्रुघ्न सिन्हा साहब तब तक लीड रोल्स करने लग गए थे और उनको विलन के रोल में लिया गया था। ऑल्सो राखी गुलजार तब प्रेग्नेंट हो गई थी और उन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी। सो ऑल दीज फैक्टर्स काइंड ऑफ पुल्ड द फिल्म डाउन। हो जाता है लाइफ में कई बार, जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है। वो क्या है, गाने की लाइन्स थी, सोचा था क्या क्या हो गया, ढूंढो मुझे मैं कहीं खो गया, मैं भी कहीं खो गई, छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई, तिनक दिन दिन तिनक दिन, अरे गड़बड़ हो गई, अरे सिट्टी बज गई। चालबाज फिल्म का गाना था, लेकिन यहाँ जो अभी हम गाना सुनेंगे वो है एक और ब्यूटीफुल सॉन्ग दो रास्ते फिल्म का। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

एक सिंगर थे जिनको नोबडीज वॉइस कहा जाता था। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन मुझे ऐसे लगता है नोबडीज वॉइस की जगह ही वॉज एवरीबडीज वॉइस। बहुत ही यूनिक आवाज, सुपर टैलेंटेड मन्ना दे साहब। और मन्ना तो उनको प्यार से बुलाते थे, उनका असली नाम था प्रबोध चंद्र डे। और ये मन्ना उर्फ प्रबोध जब कॉलेज में थे ना तो अपने दोस्तों को बहुत एंटरटेन करते थे, ऑफ कोर्स गाने सुना सुना के। और साथ ही साथ इन्हें कुश्ती और बॉक्सिंग का भी बहुत शौक था और उसमें भी बहुत पार्टिसिपेट करते थे। तो मतलब है बिशुम बिशुम धोबी पछाड़ वाले मुस्टंडे पहलवान तो थे, बाहर से एकदम रफ एंड टफ लेकिन अंदर से मोम दिल, इतने टैलेंटेड, इतने संवेदनशील। तो मन्ना डे की आवाज में वक्त फिल्म का ये क्लासिक एवरग्रीन गाना सुन लेते हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे

0: पनवड़िया तो कन्या
1: उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या
0: उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या। अरे बीड़ा के सब रस

1967 की ब्लॉकबस्टर फिल्म जूल थीफ का ये गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और इस फिल्म में सबसे डिफिकल्ट कास्टिंग अशोक कुमार साहब की थी, जिन्होंने मेन नेगेटिव रोल निभाया था, क्योंकि उस टाइम जब ये फिल्म प्लान हो रही थी उनकी हार्ट की सर्जरी हुई थी। तो जब फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर विजय आनंद उनसे मिलने गए तो उन्हें अशोक कुमार को काफी कन्विंस करना पड़ा। फाइनली अशोक कुमार माने, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ, जैसे कि सुबह 11 बजे वो मेकअप वेकअप करके एकदम तैयार होके सेट पे पहुंच जाएंगे और शूटिंग शुरू हो जाएगी। 1 बजे उनका लंच टाइम, 2 बजे शूटिंग रिज्यूम, 5 बजे पैकअप, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं कोई बिशुम बिशुम मार धाड़ मुक्के वाले फाइट सीन्स नहीं करूंगा। तब विजय आनंद साहब ने उनको बताया कि भाई आपका ये जो विलन वाला रोल है इसमें ऐसा लड़ाई झगड़ा है ही नहीं, ये विलन मसल से नहीं माइंड से लड़ता है, एकदम इंटेलिजेंट सोफिस्टिकेटेड विलन है। तो बस ये सारी बातों से फिर अशोक कुमार साहब मान गए। आप भी मान जाइए जल्दी से, मुस्कान को ले जाइए कान तक और कान रखिए मिर्ची पर, पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो,
4: कुड आई स्पीक टू कोमल प्लीज?
3: स्पीकिंग
4: कोमल, हाय आई एम रवि। हमारी कंपनी ने एक्चुअली ईव टीजिंग को लेके दिल्ली में जो लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है, लड़कियों को परेशान करते हैं, उसके खिलाफ एक इनिशिएटिव शुरू किया है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपको खुद कोमल को ये लगता है कि दिल्ली में लड़कियों को छेड़ा जाता है, लड़कियाँ बहुत इनसिक्योर हैं?
3: लगता है क्या है, बिल्कुल ऐसा है।
4: ओके
3: हम लोग निकल नहीं सकते हैं, हम लोग इनसिक्योर
4: हैं,
3: इधर से कमेंट पास होते हैं, उधर से बसेस में हमारा ट्रेवल करना मुश्किल है। इनफैक्ट मैं अपना एक केस बताना चाहती हूँ। मैं किसी काम से साकेत गई थी शाम को।
4: ओके
3: मतलब थोड़ी रात सी हो गई थी।
4: हाँ।
3: तो वहाँ मुझे छेड़ा।
4: कितने बजे गई थी आप?
3: साढ़े दस बजे।
4: साढ़े दस बजे क्यों गई थी आप? साढ़े दस बजे
3: मेरे को एक काम था वहाँ पे।
4: किस तरह का काम पड़ गया था आपको साढ़े दस बजे, जो आपको इतनी हबड़तबड़ में अकेले जाना पड़ गया?
3: मुझे बड़ी जरूरी काम
4: नहीं कितना आपको मालूम है ईव टीजिंग को लेके कितना हम परेशान हैं, लड़कियां छेड़ रही हैं। आप निकल गई साढ़े दस बजे वहाँ पे, आपको खुद को पता है आप क्या कर रही हैं?
3: एक सेकंड, आप तो गुस्से में हो।
4: नहीं गुस्से में नहीं, गुस्से की बात मेरी बात सुनिए आप लड़कों को बुरा कहती हैं। आप क्यों गई थी वहाँ पे साढ़े दस बजे?
3: एडवाइस, खुद गुस्से में हो।
4: खुद गुस्से में आप क्यों गई साढ़े दस बजे?
3: आप हद से ज्यादा
4: क्या बात कर रहे
3: हैं? मेरे को ईव टीजिंग कर रहे हैं।
4: ईव टीजिंग मैं आपको कर रहा हूँ, आप आगे बढ़ रही है बहुत ज्यादा। मैं एक इनिशिएटिव शुरू कर रहा हूँ,
3: नहीं कर सकते आप।
4: मैं एक इनिशिएटिव शुरू कर रहा हूँ जिसको लेके हम चाहते हैं कि लड़कियों की सुरक्षा हो, लड़कियों को कमेंट पास ना करें, लड़कियों
3: की सुरक्षा की बात
4: करें। किस तरह की? नहीं आप किस तरह की बात कर रही है? साढ़े दस बजे क्यों गई आप साकेत? फोन रखिए आप, बेकार की बात। हेलो
3: हेलो,
4: कुड आई स्पीक टू कोमल? कोमल हाय, हम ई टीजिंग को लेकर।
3: ओके ओके ओके
4: ओके ओके ओके ओके, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। कोमल कोमल कोमल
5: कोमल, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, पूरी दिल्ली आपको सुन रही है। मैंने मुर्गा बनाया है, छोटा सा मजाक किया था आपके साथ, आप साकेत क्यों कहेंगे साढ़े दस बजे?
3: मिस्टर ये आप हैं, गुस्सा दिलाया।
5: चलिए मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ूंगा, मेरा मतलब मैं छेड़ता भी नहीं हूँ, मेरे साथ जरा हंस के बोल।
3: ओके कुकड़ू को
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
7: तेरा क्या होगा कालिया?
8: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
7: अब मिर्ची खा।
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

कतई सुंदर गाना घर फिल्म का, आर डी बर्मन की कॉम्पोजिशन, लता मंगेशकर की आवाज, गुलजार ने इसे लिखा है। अच्छा, ये घर मूवी, इसमें विनोद मेहरा एंड रेखा थे। एक्चुअली इस फिल्म में पहले विनोद मेहरा के ऑपोजिट मौसमी चैटर्जी को लिया जाने वाला था, लेकिन उन दिनों दोनों के ऐसे रिलेशनशिप के रूमर्स थे, तो रूमर्स को हवा ना लगे, आग में घी ना डले, इसलिए उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। और आप बताइए, आपके शहर का मौसम क्या कर रहा है? आग बरसा रहा है, पानी बरसा रहा है, हवा चला रहा है, या आशिकाना हुआ जा रहा है? पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू, आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: आ जाओ आगरा वाले दिल्ली वाले मुंबई वाले चेन्नई वाले इंदौर वाले जो भी जहाँ से भी है सबके लिए डिस्काउंट।
2: श्योर स्ट्रीट वाला है पर ऑफर एलीट वाला है, रास्ता चाहे जो हो मंजिल है विरानी ज्वेलर्स, क्योंकि वहाँ मिल रहा है 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी।
3: विजिट viranijewelers.com, गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल फ्रॉम 4 जुलाई इंडिपेंडेंस डे टिल ऑगस्ट 15th इंडिपेंडेंस डे, सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
4: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
0: Purani Jeans with Charu, only on

1989 की टॉप सुपरहिट फिल्म मैंने प्यार किया का ये गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और इस गाने में ना मेरा फेवरेट पार्ट पता है कौन सा है? ये वाला। And do you know, ये आवाज उषा मंगेशकर जी की है। जी, वन ऑफ द मंगेशकर सिबलिंग्स। और उषा मंगेशकर जी के गाए गानों में मोस्ट पॉपुलर वंस आर मुंगड़ा मुंगड़ा मैं गुड़की डली, या वो आरती मैं तू आरती उतारूं रे संतोषी माता की। चलिए इन सिबलिंग्स में से अब आशा भोसले जी की आवाज में गाना सुनेंगे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Purani Jeans with Charu. Only on

भी छोटे होते समझ ही नहीं आता था कि ये सावन तो ठीक है, भादो क्या होता है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। महबूबा फिल्म का ये गाना और बड़े होके समझ में आया कि सावन यानी कि श्रावण मास और भादो यानी कि भाद्रपद विक्रम संवत का पांचवा और छठा महीना, दोनों ही में बरसात होती है, लेकिन दोनों की बरसात थोड़ी अलग अलग होती है। सावन बोले तो जुलाई अगस्त वाली बरसात, भादो बोले तो अगस्त सेप्टेम्बर वाली बरसात। वैसे सावन भादो को लेकर सायल देहलवी नाम के शायर ने कहा है, झड़ी ऐसी लगा दी है मेरे अशकों की बारिश ने, झड़ी ऐसी लगा दी है मेरे अशकों की बारिश ने, दबा रखा है भादो को, भुला रखा है सावन को। वैसे मेरे नैना सावन भादो ये गाना आनंद बख्शी साहब ने लिखा है, और नेक्स्ट जो हम सुन रहे हैं वो भी बख्शी साहब का कमाल है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची के साथ
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2 इट्स हॉट.
2: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mirchi.
3: It's

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
1: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
2: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: 92.7 FM. Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है

0: होगा कालिया।
1: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ताजा खबर, ताजा खबर, देसी न्यूज, विदेशी न्यूज, पड़ोसी की न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज ले लो।
1: शोर स्ट्रीट वाला है पर ऑफर एलीट वाला है, क्योंकि सबसे बड़ी खबर है विरानी ज्वेलर्स स्पेशल फ्रीडम सेल। पुराना गोल्ड लाओ और 100% एक्सचेंज वैल्यू ले जाओ, नो लॉस ओनली प्रॉफिट।
2: विजिट viranijewelers.com, गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल फ्रॉम 4 जुलाई इंडिपेंडेंस डे टिल ऑगस्ट 15th इंडिपेंडेंस डे। सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
3: ओनली ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। It's hot. 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Mirchi. Fresh Mal.
2: जब हर बीट में हो तड़का तब बनती है चटनी।

0: आवाज दी है नीलकमल सिंह और ममता शर्मा ने, म्यूजिक दिया है आदित्य देव और नीलकमल सिंह ने, और लिरिक्स लिखे हैं धीरज बबुआन ने। धमाल फोर से सुनते रहिए चटनी, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। रेडियो मिर्ची के
1: साथ, 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2, इट्स

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
2: कौन बोला?

आर के जूल्स। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आर के जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस, सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: अपने आइडियल से सिर्फ वही सीखें जो आपकी पर्सनल ग्रोथ में मदद करे। आइए इस बात को समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, एक बहुत कमाल की किताब है, मैंने पढ़ी थी, लेगेसी नाम की किताब है, जेम्स कर ने लिखी है, और ये एक न्यूजीलैंड की रग्बी टीम है, वो बहुत कमाल की, ऑल ब्लैक्स नाम का उनका नाम है, एंड दे वर द मोस्ट सक्सेसफुल टीम दैट प्लेड रग्बी फॉर न्यूजीलैंड। और वो किताब एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से लिखी गई है, उसमें लिखा होता है कि 15 लेसन्स फॉर लीडरशिप एंड बिजनेस। उस किताब में बताते हैं कि ऑल ब्लैक्स इतनी सक्सेसफुल टीम इसीलिए रही क्योंकि वो एक जमाने में ऐसा भी था कि वो जो शेड्स होते थे ना, जहां वो ट्रेन करने आते थे, उसको मिलके वो स्वीप करते थे, वो साफ

0: करते थे और उनमें इतनी कैमराडरी थी, इस वजह से वो कल्चरल एक लैंडमार्क भी बने और बिजनेस लीडरशिप के लिए बहुत अच्छा उनको सीखने से उनसे मिला। एक तरफ ऑल ब्लैक्स हैं न्यूजीलैंड की रग्बी टीम, दूसरी तरफ हमारे पास आइकॉन्स हैं जो हाथ नहीं मिलाते गेम के बाद, जो कभी कभी बच्चों से रूडली बिहेव करते हैं, जो आपको पेपराजी पे चिल्लाते हुए नजर आएंगे एक्सेट्रा। जब हमारे पास स्पोर्ट्स आइकॉन होते हैं जो बहुत फेमस और सक्सेसफुल होते हैं लेकिन शायद थोड़े एरोगेंट होते हैं, उनके बारे में ज्यादा बात होती है बजाय ऑल ब्लैक्स के जो इतनी बड़ी टीम है लेकिन उनके बारे में ज्यादा हम सुनते नहीं है। ऐसा क्यों होता है?
1: There was this one time when I met somebody जो content बहुत directly लोगों तक पहुंचाते हैं और मैंने भी उनको यही सवाल किया था। मैंने कहा कि आपके पास इतनी पावर है कि अगर आप कुछ अच्छा डालते हैं पॉजिटिव तो वो करोड़ों लोगों तक पहुंच जाता है, हम में से किसी के पास भी इतनी पावर नहीं है
0: जी।
1: तो उन्होंने बहुत ही, मुझे वो बात याद रहती है, उन्होंने स्माइल करते हुए कहा कि सिस्टर हम यहाँ सोशल सर्विस करने के लिए नहीं बैठे हैं, हमारा जो कंटेंट हम दिखाते हैं वो टोटली उस पर डिपेंड करता है डिमांड क्या है। जो लोग देखते हैं सुनते हैं पढ़ते हैं वही हम उनको पिरोसते हैं। Which I feel is a very sad thing, क्योंकि दोनों पे responsibility है, जो content create कर रहे हैं उनके ऊपर भी है, जो content consume कर रहे हैं उनके ऊपर भी है। अगर हम वैसा negative content consume करते हैं तो फिर वो वैसा ही बनाते चले जाते हैं। ये ऐसा है कि अभी junk food consume होता है तो junk food बनाया जाता है, आज अगर वो consume होना ही बंद हो जाए तो बनना भी बंद हो जाएगा।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: अगर आपका इंटेंट अच्छा है तो वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आइए इस बारे में और जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: कभी कभी क्या होता है, हम कंज्यूम वही करते हैं जो अवेलेबल होता है। अगर वो अवेलेबल ही ना हो तो हम कहाँ से कंज्यूम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सालों पहले मैं एक शादी में गया था और वो जो पूरा गांव था वो एक कम्प्लीटली जैन गांव था। वहाँ आलू प्याज मिलता ही नहीं है। तो मुझे याद है, और वो क्योंकि जैन गांव था तो खाने पीना सनसेट के पहले सब बंद हो जाता था। अब हमारी वो आदत नहीं है, तो हम जब वो शादी में गए, हम वहाँ मौज मस्ती के लिए गए थे और पता चला कि 6 बजे के बाद कुछ मिल ही नहीं रहा। सो धीरे धीरे फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ कंप्लेनिंग वी रियलाइज कि भाई यही तौर तरीका है, यू हैव टू फिगर दिस आउट। तो जब आलू प्याज मिलेगा ही नहीं, मैं खाऊंगा कहाँ से। तो अगर मैं सप्लाई को ही चेंज कर दूं, डिमांड अपने आप चेंज हो जाएगी।
4: ये है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन जो सप्लाई करने वाला है उसकी इंटेंशन पर भी डिपेंड करता है ना। अगर आपकी इंटेंट उस समय थी जो आप एग्जांपल दे रहे हैं कि नहीं मुझे तो अपने धर्म का पालन करना है, और दूसरी इंटेंट है कि नहीं धर्म एक साइड में गया, लोग आ रहे हैं, इंजॉय करना चाहिए, एंटरटेन करना चाहिए, उनको मौज मस्ती फील होनी चाहिए, उनसे वैलिडेशन मिलना चाहिए कि सब बहुत अच्छा था, लेकिन इतना उस समय पर करेज होना चाहिए कि मैं अपने धर्म के साथ नहीं कॉम्प्रोमाइज करने वाला, भले कोई कहे बोरिंग है, मस्ती नहीं थी, एंजॉयमेंट नहीं थी। दे वर गिविंग प्रायोरिटी टू देयर रिलीजियस प्रिंसिपल ना, नहीं तो वो 6 बजे क्यों बंद करते थे। गांव के कारण थोड़ी ना बंद कर रहे, वो तो किसी डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, भले आप रिलीजन ना भी ले पर किसी डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, इसीलिए तो उन्होंने ऐसा किया ना। ऐसे ही कई परसेंटेज लोग आपको ऐसे मिलेंगे आज भी जो वही कॉन्टेंट क्रिएट करेंगे जिसमें लोगों का बेनिफिट हो, चाहे उसको व्यूज मिले
3: या ना मिले,
4: ना मिले उसको रिकग्निशन मिले ना मिले, अवार्ड मिले ना मिले, पर वो वही क्रिएट करते हैं क्योंकि उनको है कि नहीं भले 2% भी, बट आई वांट टू इम्पैक्ट द सोसाइटी इन अ बेटर वे। लेकिन कईयों का वो इंटेंट नहीं होता, कईयों को होता है कि बस चलना चाहिए, रिकग्निशन मिलना चाहिए, मनी बनाना चाहिए, वैलिडेशन मिलना चाहिए, चाहे हम कुछ भी पिरोसे। तो उनके लिए जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है प्रॉफिट, विच इज, अब वो हर एक की इंडिविजुअल चॉइस है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अगर हर एक के इंटेंट में आ जाए कि अपलिफ्टमेंट होनी चाहिए तो अपने आप बंद हो जाएगा।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, तो ये बात आपके लिए बहुत जरूरी है।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, हाल फिलहाल में एक ऐसे कॉन्फ्रेंस में गया था जहां बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इकट्ठा हुए थे और उनसे मैं बात कर रहा था। तो ज्यादातर वो ह्यूमर पे कॉन्टेंट बनाते हैं, कुछ लोग जिसको क्रिंज कहते हैं क्रिंज रील्स बनाते हैं, कुछ लोग फिल्मों पे बनाते हैं, फैशन पे बनाते हैं, तरह तरह के लोग वहाँ आए हुए थे। और ऐसे बातचीत करते करते साधारण सा कॉन्वर्सेशन निकल पड़ा कि ऐसा क्यों है कि जो कॉन्वर्सेशन हम बना रहे हैं, जो हम परोस रहे हैं, जो हम आगे, उससे ज़्यादा एडुकेशन नहीं हो रही है। तो उनका कहना था कि भैया अगर फेमस बनना है ताकि मेरे पास ये पावर हो कि मैं लोगों को इन्फ्लुएंस करूँ, तो मुझे इस तरह का कॉन्टेंट बनाना पड़ेगा जिसमें दिमाग नहीं लगाना पड़े। तो ये तो कहीं ना कहीं चिकन एंड एग वाली स्टोरी हो गई कि एक बार मैं पावरफुल बनूं तब मैं लोगों को इन्फ्लुएंस करूंगा, लेकिन तब तक आपकी इमेज ऐसी बन गई कि आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे।
1: Absolutely.
3: तो जब इंसान आज एक नया पॉडकास्ट शुरू करना चाहता है, इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, और उसके सामने सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो ये हैं कि भैया इस तरह का कॉन्टेंट बना लो जिसमें दिमाग ना लगे, तो वो अच्छा कॉन्टेंट बनाएगा कहाँ से?
1: आपको सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, आपको ऐसे एग्जाम्पल भी मिलेंगे जो बहुत अच्छा कॉन्टेंट बनाते हैं और भी फेमस हैं, आपको ऐसे भी मिलेंगे जो नहीं अच्छा कंटेंट बनाते तो भी फेमस है। लेकिन ये जिस समय आप किसी भी यात्रा की शुरुआत कर रहे होते हैं, जर्नी की शुरुआत कर रहे होते हैं, आप बीज बो रहे होते हैं, आपको उस समय पर डिसाइड करना होता है कि मेरे को जो करना है मेरे लिए क्या राइट है। दुनिया सब कुछ, दुनिया के लिए नहीं आप कह सकते, सबके लिए एक ही चीज़ राइट होगी। जैसे हम खाने की भी बात करते हैं, उसमें भी हर एक चूज़ करता है ना कि मुझे कोई तला वाला भी उसको मुश्किल नहीं लगती है क्योंकि उसकी बॉडी डाइजेस्ट कर लेती है। आज हम कहेंगे ये नहीं खाना चाहिए, रात के समय ये नहीं खाना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, कहेगा मुझे तो कुछ नहीं होता। कोई कहेगा चाय के अंदर 100 प्रकार के जहर हैं, दूसरा कहता है चाय तो मेरे लिए मेडिसिन का काम करती है। सो इफ यू आर लुकिंग कि सब लोग एक चीज को अग्री करेंगे, मुझे नहीं लगता ऐसा पॉसिबल है। लेकिन आपकी इंटेंट क्या है? सी एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स मोस्ट इज नॉट जस्ट योर टैलेंट बट इट्स द इंटेंट जिससे आपने वो काम किया है।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
4: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: अगर आपके पास लोगों को इन्फ्लुएंस करने की पावर है तो उसे सही तरीके से कैसे यूज करें, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: लोग कह रहे हैं कि मैं इंटेंट है कि मैं एक दिन इतना इन्फ्लुएंशियल पावरफुल बन जाऊं ताकि मैं लोगों की जो सोचने की जिस तरह मैं ले जाना चाहता हूँ वो भी चेंज कर पाऊँ। तो इंटेंट सही है, लेकिन उसके लिए पहले मुझे बड़ा बनना पड़ेगा।
4: इंटेंट और तरीका,
3: हाँ,
4: दोनों ठीक होना चाहिए। भाव भी ठीक होना चाहिए और उसका तरीका भी ठीक होना चाहिए।
3: मुश्किल पेपर दे दिया आपने।
4: मुश्किल नहीं है, सत्य है। आपको इजी करना है तो इजी भी कर सकते हैं, राइट करना है तो राइट भी कर सकते हैं। इजी करके भी रिजल्ट आ जाता है, इमीडिएट रिजल्ट उसमें भी मिल जाती है, सफलता उसमें भी मिल जाती है। लेकिन जब हम राइट करते हैं तो हमें फेथ होता है, इफ यू डू राइट, राइट विल हैपन टू यू टुडे एंड टुमारो।
3: एक बहुत ज्ञानी इंसान ने मुझे एक बार कहा था कि भैया तुम चेंज तभी कर पाओगे जब लोग तुमको देखेंगे, जब तुम दिखोगे ही नहीं बदलाव कैसे लाओगे। तो उसके लिए क्या है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, अगर सोशल मीडिया पे आपको छाना है तो पहले नजर तो आओ, और नजर तभी आओगे जब एल्गोरिथम आपको दिखाएगा, और एल्गोरिथम आपको तभी दिखाएगा जब आप फ्रीक्वेंटली आपके फॉलोअर्स एंगेजमेंट बढ़ते रहें। तो ये तो थोड़ा सा ट्रैप है कि जब तक मैं बड़ा नहीं बन पाया, मैं लोगों की सोच नहीं बदल पाया, इंटेंट मेरा सही है लेकिन अच्छा कुछ ऑफर करने के लिए भी है लेकिन मैं वहां पहुंच ही नहीं पा रहा।
4: बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। एक तरफ आप इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं इन्फ्लुएंस करना चाह रहा हूँ, उसके लिए मुझे फेमस होना पड़ेगा और फेमस होने के लिए मुझे थोड़ा बहुत गलत करना पड़ेगा। तो फिर आप क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? आपकी जो फाउंडेशन ही है अगर वो कमज़ोर है तो आप कभी भी लॉन्ग टर्म पर तो सफल नहीं हो सकते। और जो लोग आज फेमस हैं या जिनको लोग आज मानते हैं या सुनते हैं, क्या लोग उनको हमेशा से जानते थे?
3: नहीं।
4: तो उन्होंने भी तो कोई यात्रा तय की होगी। अब वो यात्रा आपने कैसे तय करी, वो आपके पास चॉइस थी। आप ऑथेंटिसिटी, ऑनेस्टी, ट्रूथ से भी कर सकते थे, आप शॉर्टकट लेकर के भी कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार संस्कार ही अगर गलत करने का पड़ गया
3: तो आदत बन जाएगी,
4: तो फिर आप सोचें कि वहां जाकर के, जैसे कई लोग कहते हैं ना, जब मेरे पास बहुत धन आ जाएगा ना तब मैं दान करूंगा। लेकिन दान करना एक संस्कार है। आज जिसका संस्कार होगा उसके 10 रुपए की पॉकेट मनी होगी ना, उसमें से भी बच्चा 2 रुपए जाकर के दान कराता है। तो ये कभी कभी हम अपने को धोखा दे रहे होते हैं। इसलिए जहां पर है, अगर आपकी इंटेंशन इंस्पायर करने की है तो उसके लिए आपको फेमस होने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको सही करने की जरूरत है, एंड देन थिंग्स विल हैपन ऑटोमेटिकली।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: सोशल मीडिया ट्रोलिंग को हैंडल कैसे करें, आइए एक ओटीटी सीरीज के एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर श्रेया, हाल फिलहाल में ना एक बहुत ही पॉपुलर ओटीटी सीरीज है, उसका 5वां सीजन आया। पहले जो 4 सीजन थे उसमें बहुत ही एक पॉपुलर रोल था, बहुत यादगार रोल था, उसको निभाया था वैभव राज गुप्ता के नाम के एक एक्टर ने। उन्होंने अन्नू मिश्रा का एक रोल किया था, बहुत पॉपुलर हो गया वो रोल। लेकिन 5वें सीजन के पहले किसी क्रिएटिव मतभेद की वजह से प्रोडक्शन टीम और उनमें कोई अनबन हो गई और उन्होंने ये सीजन छोड़ दिया या उन्हें निकाला गया, वो तो कोई नहीं जानता। लेकिन उन्होंने 5वां सीजन नहीं किया। 5वें सीजन में उस रोल के लिए अनंत वी जोशी नाम के एक एक्टर हैं, उनको ले लिया गया। अब जब लोगों को पता चला तो अनंत वी जोशी की बहुत ट्रोलिंग हुई, क्योंकि ये बहुत यादगार पॉपुलर लेजेंडरी तरह का एक कैरेक्टर बन गया था। अब अगर मैं अनंत वी जोशी हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, प्रोडक्शन टीम और एक एक्टर भी इसमें कुछ अनबन हुई और मुझे रोल ऑफर किया गया, मैं रोल कर रहा हूँ, लेकिन मेरी भर के ट्रोलिंग हो रही है, मेरी कोई गलती नहीं इसमें, मैं क्या करूँ?
4: आप उसके साथ कैसे डील करते हैं वो आपकी चॉइस है, क्योंकि कुछ हो रहा है हमारे साथ लाइफ में, बहुत सारे सीन्स और सिचुएशंस अचानक आते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि ऐसे कैसे हो गया, मेरी तो कोई गलती नहीं है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। दैट इज वन थिंग, आप उसमें भी स्टक रह सकते हैं। और दूसरा है कि आप उस सेम सिचुएशन के साथ अपने मन में एक कॉन्वर्सेशन करें
3: जी।
4: और अपने मन में कॉन्वर्सेशन करके उसे डील करके बी एट पीस। और आप समझ रहे हैं कि जो ट्रोलिंग हो रही है वो इसलिए नहीं हो रही कि लोगों को कुछ आपसे प्रॉब्लम है, वो ट्रोलिंग इसलिए हो रही है क्योंकि जो कैरेक्टर किसी ने पहले प्ले किया था लोग उससे प्यार करते थे।
3: बिल्कुल।
4: अब जब वो कैरेक्टर को निकाला गया फॉर वट एवर रीजंस, तो वो हर्ट है। अब क्योंकि वो हर्ट है तो हर्ट पीपल वो कहीं तो अपना गुस्सा निकालेंगे, इसलिए वो गुस्सा आपके ऊपर निकाल रहे।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
1: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल आया है अंजलि शौरकार जो हैं कोलकाता से, लिखती हैं कि मैं सौभाग्यवती कैसे बन सकती हूँ।
3: उनको क्यों लगता है कि उनको बनना है? सब सौभाग्यवती है ना?
2: बिल्कुल सही कह रही हैं।
3: हमारी सोच से कई बार नेगेटिव हमारे जीवन में होने लगता है।
2: वाह।
3: जब कई बार कुछ गड़बड़ होने लगती है तो हमें लगता है कि शायद
2: हमारे कारण हो रहा है,
3: मैं अनलक्की हूँ या मेरे कारण ऐसा हो रहा है। और जब हम ऐसा सोचना शुरू करते हैं
2: तो वैसा ही होता है।
3: देखो, भाग्य बनता है कर्म से।
2: बिल्कुल,
3: जैसा कर्म होगा वैसा भाग्य होगा, और कर्म की शुरुआत होती है संकल्प से।
2: हाँ, जो सोचते हैं उससे होती है।
3: सोच भी कर्म है।
2: बिल्कुल,
3: सोच भी कर्म है, बोल भी कर्म है, और फिर जो हम व्यवहार करते हैं वो भी कर्म है। ऐसे व्यवहार ही कर्म नहीं है। हम किसी के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन सोच अच्छा नहीं रहे हैं, वो भी तो फिर बैड लक लेकर के आएंगे ना। जो हम कई बार वैसे कह देते हैं कि पता नहीं सुबह सुबह किसका
2: मुंह देख के उठा,
3: चेहरा देखा या मुंह देखा, एक्चुअली में वो जो हमारी पहला थॉट प्रोसेस होता है वो फाउंडेशन सेट करता है। इसलिए हर कोई सौभाग्यवती है। जरूरी है उस भाग्य को बनाए रखना, और उस भाग्य को बनाए रखने के लिए अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, अच्छा करना है। अगर कुछ गलत हमारे सामने आ भी जाता है तो भी अच्छा सोचना है,
2: और उसके पहले अच्छा सुनना है, उसके लिए आप ही शो सुन सकती
3: हैं। एब्सोल्युटली। क्योंकि कभी कभी जीवन में अगर कोई बहुत बात आ भी जाती है इसका मतलब ये नहीं हम अनलक्की है।
2: बिल्कुल,
3: बात आई है, बात का सामना करेंगे, कोई भी चीज है उसको फेस करेंगे। ये थॉट क्रिएट नहीं करे कि हम बहुत अनलक्की हैं, उस कारण से ये चीज आई है, ऐसा नहीं है। कई बार कोई कोई चीजें हमें बहुत शक्तिशाली बनाकर जाती है।
2: What doesn't kill us makes us stronger.
0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.

0: putting the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
1: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin. अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल आया है कि मैं काफी समय से परेशान रह रहा हूँ और समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति में सही मार्गदर्शन क्या हो सकता है? सुनील लिखते हैं।
3: बिना किसी की प्रॉब्लम जाने कोई भी प्रकार का मार्गदर्शन देना तो नहीं पॉसिबल है, लेकिन फिर भी अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है, वैसे तो अपने जीवन के जो डिसीजंस हैं वो हम अपने बेस्ट ले सकते हैं, अपने सर्कमस्टांसेस को जानते हुए, अपनी कैपेसिटीज को जज करते हुए। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है आपसे नहीं हो रहा है, बहुत कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो जिनको आप ट्रस्ट करते हैं, जिनको आपको लगता है कि इनके जीवन से आप संतुष्ट हैं, कोई तो आइडल होगा, कोई तो गाइड होगा, कोई, उनसे जाकर के राय लें। देयर आर टाइम्स जब हमें लगता है कि नहीं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि हम परेशान हैं, अंदर में कंफ्यूजन है,
2: वरी कर
3: तो
2: रहे।
3: जिस व्यक्ति को आप ट्रस्ट करते हैं या रोल मॉडल की तरह देखते हैं, या आपको लगता है वो आपसे
2: ज्यादा जानते हैं,
3: ज्यादा अनुभवी हैं, आप उनकी राय ले लें।
2: बिल्कुल, लेकिन परेशान नहीं हो, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होता।
3: परेशान से तो कोई फायदा है ही नहीं, और अगर आप परेशान नहीं होते तो खुद भी अपने जीवन के डिसीजंस ले पाते, क्लैरिटी आ जाती।
2: यू नो, मार्क ट्वेन ने बहुत कमाल की एक बात कही थी कि वरिंग इज लाइक पेइंग अ डेट यू डोंट ओ।
3: यस,
2: तो वो करने का क्या ही फायदा है।
3: वो कहते हैं, हिंदी में भी कहते हैं ना, चिंता चिता के समान है।
2: जी बिल्कुल।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: It's 7:30 a.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.

0: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
2: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
3: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
4: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
3: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
4: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
3: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
0: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल आया है, लिखते हैं कि नमस्ते सिस्टर श्रेया, मैंने हाल ही में आपको सुनना शुरू किया है और आपकी बातें मुझे सच में बहुत इंस्पायरिंग लगती हैं। मैं अपने पास्ट को लेकर स्ट्रगल कर रही हूं। जिस इंसान पर मैंने 4 साल ट्रस्ट किया, उसने बिना किसी एक्सप्लेनेशन के रिलेशनशिप खत्म करके मुझे घोस्ट कर दिया। 4 महीने हो गए हैं, मैंने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश भी की लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मुझे पता है कि मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती, फिर भी एक सवाल बार बार मुझे डिस्टर्ब करता है कि कोई बिना कुछ कहे सब कुछ कैसे छोड़ सकता है। जब सामने से क्लोजर ना मिले तो खुद को कैसे हील करें और कैसे मूव ऑन करें?
3: उसको एक खूबसूरत मोड़ समझ करके भूल जाए। See, the time that you have spent with that person was very good. Closure बाहर से नहीं मिलता, closure खुद को देना पड़ता है। ठीक है, आपके साथ कुछ ठीक नहीं हुआ, आप चाहेंगे ये चीज का आंसर आपको मिले कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है, लेकिन हम चाह रहे हैं पर वो नहीं बात करना चाह रहे या वो नहीं इस चीज को आंसर कर रहे हैं, तो कितना उसके अंदर और इन्वेस्ट करेंगे, कितना और अंदर ही अंदर अपने साथ नेगेटिव कॉन्वर्सेशन करेंगे। फिर कभी कभी हमारा अपने से फेथ भी खत्म होना शुरू हो जाता है
2: कि मुझे में कुछ कमी होगी।
3: हाँ, मुझ में कोई कमी होगी, मेरे में कोई प्रॉब्लम होगी। देन वी कीप इमेजिनिंग थिंग्स, वी कीप अज्यूमिंग थिंग्स, वी कीप, और वो हमें वीक करता है ना। हमने कोई रिलेशनशिप में अपना 100% दिया, इंजॉय किया, बहुत कुछ उससे सीखा, ट्राई भी किया उसको वर्कआउट करने के लिए। आई विल नेवर से कि छोड़ दे। अगर किसी भी रिश्ते के अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ट्राई करना चाहिए वो जब तक बन सके, क्योंकि रिश्ता क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है। दो जने होते हैं, डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट अगर होते हैं तो संस्कारों की थोड़ी रास करनी पड़ती है। कभी किसी को झुकना पड़ता है, कभी किसी को थोड़ा सहन करना पड़ता है, कभी किसी को लेट गो करना पड़ता है, तो ही वो रिश्ता आगे बढ़ता है। हर समय आप समझे मैं ही राइट हूँ तो भी वो रिश्ता नहीं बनता है। तो रिश्ते के अंदर एक एफर्ट होता है, आप इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अगर आपने सब कुछ कर लिया और वो व्यक्ति क्लियरली कहता है कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहता, देन आई डोंट थिंक इट इज फेयर ऑन यू। क्या वो चीज को सोच करके दुख में जाएं, उसका जख्म क्रिएट करें, बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाएं? इट इज हार्मिंग यू, आपकी बॉडी, आपकी सोल, आपका वर्क, आपका एनवायरमेंट। इसलिए लेट गो, क्लोजर अपने को दे। बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था, शायद अब शायद इससे भी कोई और अच्छा मिलेगा। मे बी आई डिजर्व समबडी बेटर। वैसे भी अगर कोई ऐसे आपको बिल्कुल छोड़ करके चला गया,
2: उसके भरोसे
3: आप रियलाइज भी कर रहे हैं कि आप उसके साथ जीवन भर तो बिता नहीं सकते हैं, सो देन गिव दैट क्लोजर टू योरसेल्फ। अच्छा ही हो गया, किसी परमानेंट रिलेशनशिप में जाते, मैरिज आती होती, इससे पहले मुझे इस व्यक्ति के बारे में पता चल गया। ग्रेटिट्यूड फील करें। किसी व्यक्ति की अगर कोई नेगेटिविटी पहले सामने आ जाती है और आप बच जाते हैं, तो ये भी जैसे आपका कोई अच्छा पुण्य कर्म है।
2: आई थिंक उन्होंने क्लोजर ले लिया जब उन्होंने बोला कि मुझे पता है कि मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती। क्लोजर आपको
3: मिल नहीं, क्लोजर तब तक नहीं मिलता है जब तक हम उस दर्द से बाहर नहीं आते
2: या सामने वाला मुझे जवाब नहीं दे,
3: जो भी कारण है। लेकिन दर्द तो हम क्रिएट कर रहे हैं ना, अभी वो जो भी जवाब देंगे, लेकिन दर्द तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने उसको पकड़ा हुआ है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं होल्ड ऑन कर रहा हूँ, आई एम नॉट लेटिंग गो। क्लोजर उस दिन होगा व्हेन आई से आई लेट गो, दे वर ब्यूटीफुल 4 इयर्स
2: एंड आई मूव ऑन।
3: बहुत सुंदर थे, फिर ये सीन हुई, बहुत अच्छी नहीं थी, बट नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन। शायद इससे अच्छा कोई सीन लाइफ में आना बाकी है, इससे अच्छा व्यक्ति आना बाकी है, और अब वो चीज अंदर पेन क्रिएट नहीं कर रही है, वो अंदर दुख नहीं दे रही है, यू आर कम्फर्टेबल, आपने एक्सेप्ट कर लिया है, दैट इज क्लोजर। आप दर्द में है तब तक वो क्लोजर नहीं है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। क्या हाल चाल है? कॉफी हाथ में है या अभी भी आंखों पर लोडिंग प्लीज लिखा हुआ है? वैसे ये वो शो शुरू हो चुका है जहाँ पर हम ट्रैफिक को थोड़ा सा लाइटर, डेडलाइंस को थोड़ा सा ब्राइटर और होम सिकनेस को थोड़ा सा और टाइटर हक देने वाले हैं। यार देसी लाइफ अब्रॉड ना कमाल की होती है। इंडिया में मम्मी जी बोलती है कि जल्दी उठ जाओ बेटा, और यहाँ पर अलार्म क्लॉक बोलता है, वेदर ऐप बोलता है, आउटलुक कैलेंडर बोलता है, बस सैलरी है कि चुपचाप बैठी रहती है। आज के शो में होने वाला फुल ऑन बॉलीवुड का तड़का, फिल्मी गॉसिप, म्यूजिक जो एकदम बैंगर है, और साथ साथ में कुछ अराउंड द वर्ल्ड की खबरें तुम्हें मिलने वाली, इंटरेस्टिंग स्टोरीज, थोड़ा सा लाफ्टर एंड वो देसी वॉर्म्थ जो तुम्हें सिर्फ अपनी मम्मी के घर में मिलती थी। और हाँ, ऑफ एयर दोस्त भी मिलने वाला है मुझे, यानी कि प्रिसिला को फॉलो करो इंस्टाग्राम और एक्स पर फटाफट से जाकर। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi.
1: Buscabana, buscabana, sacabana.
2: Rambala.
1: Murga, murga. La misma la murga.
2: Mirchi, murga.
3: हेलो
4: गुड इवनिंग मिस्टर श्रीवास्तव, मैं मॉडर्न स्कूल से बोल रहा हूँ, आपके बेटे के स्कूल से। हाउ आर यू?
3: वेरी फाइन, थैंक यू।
4: अतुल वैसे पढ़ाई लिखाई में यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिल्कुल आगे नहीं है।
3: आई नो, वो खेल में कुछ ऐसा है नहीं खास ज्यादा।
4: हाँ, नहीं, वही मैं आपको बताना चाह रहा था। अच्छा मिस्टर श्रीवास्तव, क्योंकि हम 26 जनवरी पे एक फंक्शन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पेरेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करें। पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा परफॉर्म वो करेंगे उसके मार्क्स बच्चे को दिए जाएंगे। यू नो,
3: परफॉर्म मतलब क्या, परफॉर्म क्या करना होगा हमको?
4: कुछ भी ऐसा करिएगा जो कि बच्चों की चीज हो। आप प्लीज आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करिए। आप आओ मिलो शिलो शालो करिए ना यहाँ पे आके स्टेज पे।
3: गेम है क्या ये?
4: आओ मिलो शिलो शालो,
3: पेरेंट्स को परफॉर्म करना होगा?
4: वो सिर्फ आप ही को परफॉर्म करना होगा, आप ही को ये पूरा बोलना होगा आओ मिलो शिलो शालो। एक्चुअली प्रॉब्लम भी है, हमारे पास चार ही थे उसमें से यही बचा है। आओ मिलो शिलो शालो अगर आप ले सकते हैं तो आप इस
3: पेरेंट्स को परफॉर्म करना होगा।
4: वो सिर्फ आप ही को परफॉर्म करना होगा, आप ही को ये पूरा बोलना होगा आओ मिलो शिलो शालो। एक्चुअली प्रॉब्लम भी है, हमारे पास चार ही थे उसमें से यही बचा है। आओ मिलो शिलो शालो अगर आप

0: पत्ते तोड़े, दस पत्ते तोड़े,
1: दस पत्ते तोड़े,
0: हिरण का बच्चा, हिरण का बच्चा, सब हिरण का बच्चा,
1: ओके ओके सॉरी सॉरी, हिरण का बच्चा,
0: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू,
1: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू,
0: श्रीवास्तव बोले कुकड़ू को,
2: श्रीवास्तव बहुत अच्छा लगता है जब बाप कोई बच्चा बनने की कोशिश करता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आपकी वाइफ ने मुझे नंबर दिया था, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया है।
1: यार ये कोई सुनेगा तो नहीं।
2: सर ये सब सुन चुके हैं, अब प्यार से एक बार बोल दीजिए, इसको रिपीट कर लीजिएगा, बार बार बोलिएगा कुकड़ू को।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
7: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
8: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
9: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
10: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
11: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
12: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
11: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
12: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
11: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
13: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
14: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
15: Iselin, New Jersey. Yes, you heard that right. That's the brand new Joy Alucard's destination in the USA. Be among the first to celebrate our grand opening with an unbeatable inaugural offer of flat 30% off on making charges. Shop before 19th July and receive assured gifts with every purchase. Visit us at 42 Marconi Avenue, Iselin, New Jersey and discover exquisite collections crafted for every celebration. Inaugural offer valid until 26th July 2026. TNC apply. Joy Alucard's, world's favorite jeweler.
16: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
3: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, guys. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और टाइम आ गया है ऑन दिस डे पता करने का हिस्ट्री में क्या हुआ था. चलो रिवाइंड मारते हैं. 1789 में फ्रांस में स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टिल हुआ और वहीं से शुरू हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन. आज भी बास्टिल डे बड़े स्टाइल से सेलिब्रेट किया जाता है. 1942 में इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास किया. एक पावरफुल कॉल, अंग्रेजों भारत छोड़ो. हिस्ट्री का इंडिया में असली माइक ड्रॉप. 1965 में नासा के मरीनर 4 ने मार्स की पहली क्लोजअप पिक्चर भेजी थी. सोचो उस टाइम सेल्फी का कॉन्सेप्ट था ही नहीं दूर दूर तक और मार्स कैमरा रेडी था. 1951 में फरारी ने सिल्वरस्टोन में अपनी पहली फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्री विक्ट्री जीती थी और तभी से स्पीड और फरारी की लव स्टोरी ऑफिशियली शुरू हो गई थी. और 2016 में फ्रांस के नाइस सिटी में बास्टिल डे सेलिब्रेशन के दौरान एक हार्ट ब्रेकिंग टेरर अटैक हुआ. आज हम उन सब लोगों को याद करते हैं जिन्होंने उस दिन ट्रेजेडी में अपनी जान गंवाई या अपने लव्ड वंस को गंवाया. एंड विद दैट यहाँ पर टाइम ट्रैवलिंग जर्नी खत्म होती है. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. अभी चलाते हैं मिर्ची दार गाने तुम्हारे लिए. स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट.

0: मैजिक। मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए। 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में। सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
1: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, guys. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. This is Mirchi Mornings and now we are going to talk about FIFA.
2: Mirchi watch it.
1: As of yesterday, tournament अभी semi-final stage पर पहुंच चुका है और क्या lineup है बॉस. France, Spain, England और Argentina. मतलब football के heavyweight champions एक ही stage पर मौजूद हैं. एंड प्लेयर वॉच भी सुन लो. जूड बेलिंगम इज एब्सोल्युटली ऑन फायर. इंग्लैंड के सुपरस्टार के नाम टूर्नामेंट में 6 गोल्स हैं और नॉर्वे के अगेंस्ट एक्स्ट्रा टाइम में 2 जबरदस्त गोल मारकर इंग्लैंड को सेमीफाइनल तक पहुंचाया इन्होंने. प्योर क्लच प्लेयर वाइब्स. उधर किलियन एम्बापे गोल्डन बूट रेस में टॉप पर हैं विद 8 गोल्स और फ्रांस की अटैक लाइन को रॉकेट मोड में चला रहे हैं. और फुटबॉल लवर्स कैलेंडर सेट कर लो, आज है ब्लॉकबस्टर फ्रांस वर्सेस स्पेन सेमीफाइनल और कल इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना. तो पॉपकॉर्न और बाकी का स्नैक्स विद चाय एंड ड्रिंक्स सब कुछ रेडी है कि नहीं है. व्हाट्सएप ग्रुप पर अननेसेसरी रेफरी एनालिसिस करने वाले सारे लोगों को ब्लॉक कर दिया है ना. वैसे तुम किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो? दिल अर्जेंटीना के साथ है, इंग्लैंड के, स्पेन के या फ्रांस के? मुझे पक्का से बताओ. अभी के अभी मुझे मैसेज करो. मिर्ची प्रिज इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर भी नोट करो, 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. एंड राइट नाउ स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
5: अब मिर्ची खा।
7: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और अब मिर्ची मॉर्निंग्स पर बारी आ चुकी है वेदर का हालचाल जानने की। फिलहाल टेम्परेचर है 67 डिग्री फारेनहाइट, ब्राइट सनशाइन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हल्की सी ब्रीज की वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर कम फील हो रहा है, यानी 65 डिग्री फारेनहाइट के आसपास। अदरवाइज बालकनी में बैठकर गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट चाय या कॉफी के साथ आज के दिन की शुरुआत की जाए तो एकदम शेफ्स किस वाला दिन बन जाएगा। अब ट्विस्ट ये है कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, मर्क्यूरी जो है वो सीधा 95 डिग्री फारेनहाइट तक पहुंचने वाली है, और फील्स लाइक टेम्परेचर होने वाला है 97 डिग्री के आसपास। हाँ जी, तो ये वो वेदर है जो कहता है मेकअप से ज्यादा आज सनस्क्रीन इम्पोर्टेंट है। गुड न्यूज ये है कि रेन का आज जीरो चांस है। पिछले 24 आवर्स में भी बारिश नहीं हुई, और अगले 24 आवर्स में भी अम्ब्रेला आज सिर्फ एक फैशन एक्सेसरी बना रहेगा, अगर साथ में कैरी करोगे तो, वरना जरूरी नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि एक्सट्रीम हीट वार्निंग इफेक्ट में है, और साथ ही एयर क्वालिटी अलर्ट भी चल रहा है, इसीलिए घर से बाहर अगर निकल रहे हो तो जरूरी हो तभी निकलना, और अगर जाना ही है तो साथ में अपने वाटर बॉटल कैरी करना बिल्कुल बनता है, बिकॉज यू गॉट टू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। साथ साथ में अपनी त्वचा को सूरज की किरणों से बचाने के लिए सनस्क्रीन लगा लो, वो भी SPF 50++++ वाला। और एक एक्स्ट्रा बात का ख्याल रखना है कि लेयर के प्लेयर बनना है आज, क्योंकि टेम्परेचर आज काफी फ्लक्चुएट कर रहा है। और साथ साथ में मिर्ची की वाइब्स बरकरार रखनी है तुम्हें, इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। अभी के लिए मिर्ची दर बैंगर्स का टाइम है, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: हेलो देयर मेरे दोस्त, मैं हूं तुम्हारी होस्ट, नाम है प्रिसिला और शो का नाम है मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब बारी है मिर्ची आवर का 3। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर क्लियर किया है कि इंडिया का यूरेनियम सप्लाई के लिए सेफगार्ड्स इन प्लेस हैं। ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर पैट कॉनरॉय ने कहा है कि उन्हें भरोसा है कि ऑस्ट्रेलियन यूरेनियम सिर्फ सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी के लिए ही यूज होगा। साथ ही उन्होंने इंडिया को एक राइजिंग ग्लोबल पार्टनर बताया है। नंबर टू पर यमन से टेंशन की खबर आ रही है। सनाज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर स्ट्राइक के बाद रीजन में तनाव बढ़ गया है। हूथी ग्रुप ने रिटेलिएशन की वार्निंग दी है। सिचुएशन रैपिडली डेवलप हो रही है। और फाइनली स्पोर्ट्स से, इंडिया की वुमेन क्रिकेटर्स ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। लॉर्ड्स में खेला गया पहला एवर वुमेन्स टेस्ट और इंडिया ने इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया। क्रांति गौड के 7 विकेट्स और यास्तिका भाटिया की ब्रिलियंट सेंचुरी ने मैच को यादगार बना दिया। एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का 3। अगर अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम इंस्टा और एक्स पर, एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची। दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट।

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La vizba la burga. Milci, burga. Burga.
2: Hello.
3: Could I speak to Komal, please?
2: Speaking.
3: Komal, hi. I am Ravi. हमारी कंपनी ने एक्चुअली ईव टीजिंग को लेके दिल्ली में जो लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है, लड़कियों को परेशान करते हैं, उसके खिलाफ एक इनिशिएटिव शुरू किया है. तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपको खुद कोमल को ये लगता है कि दिल्ली में लड़कियों को छेड़ा जाता है, लड़कियाँ बहुत इनसिक्योर हैं?
2: लगता है क्या है, बिल्कुल ऐसा है.
3: ओके.
2: हम लोग निकल नहीं सकते हैं, हम लोग इनसिक्योर हैं. इधर से कमेंट पास होते हैं, उधर से बसेज में हमारा ट्रेवल करना मुश्किल है.
3: राइट.
2: इनफैक्ट मैं अपना एक केस बताना चाहती हूँ. मैं किसी काम से साकेत गई थी शाम को.
3: ओके.
2: मतलब थोड़ी रात सी हो गई थी. तो वहाँ मुझे छेड़ा.
3: कितने बजे गई थी आप?
2: 10:30 बजे.
3: 10:30 बजे क्यों गई थी आप? 10:30 बजे
2: मेरे को एक काम था वहाँ पे.
3: किस तरह का काम पड़ गया था आपको 10:30 बजे, जो आपको इतनी हबड़ तबड़ में अकेले जाना पड़ गया?
2: मुझे बड़ी जरूरी काम
3: नहीं. कितना आपको मालूम है ईव टीजिंग को लेकर कितना हम परेशान हैं, लड़कियां छेड़ रही हैं. आप निकल गई 10:30 बजे वहाँ पे. आपको खुद को पता है आप क्या कर रही हैं?
2: एक सेकंड, आप तो गुस्से में हो.
3: नहीं, गुस्से में नहीं, गुस्से की बात मेरी बात सुनिए. आप लड़कों को बुरा कहती हैं. आप क्यों गई थी वहाँ पे 10:30 बजे?
2: खुद गुस्से में.
3: आप क्यों गई 10:30 बजे?
2: आप हद से ज्यादा
3: क्या बात कर रहे हैं?
2: मेरे को
3: ईव
2: कर रहे हैं.
3: ईव टीजिंग मैं आपको कर रहा हूँ, आप आगे बढ़ रही है बहुत ज्यादा. मैं एक इनिशिएटिव शुरू कर रहा हूँ.
2: नहीं,
3: मैं एक इनिशिएटिव शुरू कर रहा हूँ जिसको लेके हम चाहते हैं कि लड़कियों की सुरक्षा, लड़कियों को कमेंट पास ना करें, लड़कियों
2: की सुरक्षा की बात.
3: किस तरह की? नहीं, आप किस तरह की बात कर रही है? 10:30 बजे क्यों गई आप? सागे फोन रखिए आप, बेकार की बात. हेलो, लड़कियों सुरक्षा
2: की
3: किस तरह की? नहीं, आप किस तरह की बात कर रही है? 10:30 बजे क्यों गई आप? सागे फोन रखिए आप, बेकार की बात. हेलो
2: हेलो,
3: आई कुड

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे तुम मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब लेट्स हियर फ्रॉम हॉलीवुड और रादर हॉलैंड। तो हुआ कुछ ऐसा कि टॉम हॉलैंड यानी कि हमारे फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन ने रिवील किया कि उन्होंने नॉर्वे के फुटबॉल सुपरस्टार एर्लिंग हॉलैंड को डीएम भेजा था, एंड गेस व्हाट, रिप्लाई ही नहीं आया। टॉम ने खुद इस इंसिडेंट को एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस कहा है। उन्होंने बताया कि वो मोनाको में फॉर्मूला 1 रेस देख रहे थे, लुइस हैमिल्टन को सपोर्ट भी कर रहे थे, हॉलैंड दिखे तो सोचा व्हाई नॉट एक मैसेज भेज देता हूँ। बस मैसेज तो गया लेकिन रिप्लाई वेकेशन पर चला गया। एंड ऑनेस्टली यार, ये कितना रिलेटेबल है हम आम लोगों के लिए। तो यार, कभी कभी किसी दोस्त को आप मैसेज भेजते हो, कभी किसी क्रश को भेजते हो, कभी फैमिली ग्रुप में तुम्हारा मैसेज या मीम इग्नोर हो जाता है, तब पता चलता है कि ब्लू टिक्स डोंट डिस्क्रिमिनेट, सेलिब्रिटीज हो या कॉमनर हो, गोस्टिंग सबके साथ होती है। लेकिन टॉम की बात में एक लेसन भी था। उन्होंने कहा कभी कभी ऐसे मोमेंट्स ईगो को ग्राउंड पर ले आते हैं और वो भी जरूरी होता है। फेयर इनफ टॉम। वैसे अगर तुम मेरे मैसेजेस इग्नोर करोगे तो मैं अगले शो में नाम तो नहीं लूंगी तुम्हारा, लेकिन मुझे अगर मैसेज भेजोगे तो शायद तुम्हारा नाम ले लूं। फटाफट से मुझे मैसेज करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244। फिलहाल चलाते मिर्ची तार बैंगर्स तुम्हारे लिए। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: ताजा खबर, ताजा खबर, देसी न्यूज, विदेशी न्यूज, पड़ोसी की न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज ले लो।
1: शोर स्ट्रीट वाला है पर ऑफर एलीट वाला है, क्योंकि सबसे बड़ी खबर है विरानी ज्वेलर्स स्पेशल फ्रीडम सेल। पुराना गोल्ड लाओ और 100% एक्सचेंज वैल्यू ले जाओ, नो लॉस ओनली प्रॉफिट।
2: विजिट viranijewelers.com, गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल फ्रॉम 4 जुलाई इंडिपेंडेंस डे टिल ऑगस्ट 15th इंडिपेंडेंस डे, सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
3: ओनली ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री.
3: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन. देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस. अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप. लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस.
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. दैट इज 732-339-3155.
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
5: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
7: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
8: Iselin, New Jersey. Yes, you heard that right. That's the brand new Joy Autocars destination in the USA. Be among the first to celebrate our grand opening with an unbeatable inaugural offer of flat 30% off on making charges. Shop before 19th July and receive assured gifts with every purchase. Visit us at 42 Marconi Avenue, Esalen, New Jersey, and discover exquisite collections crafted for every celebration. Inaugural offer valid until 26th July 2026. TNC apply. Joy Autocars, world's favorite jeweler.
9: तेरा क्या होगा कालिया?
10: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
9: अब मिर्ची खा.
11: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: आता माझी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए, कमर पे तेरी बटरफ्लाई, बॉडी तेरी मक्खन जैसे, खाने में बस तू बटर खाए। Come on baby, kick it, kick it, काटू तेरी टिकट टिकट, खेलता नहीं क्रिकेट विकेट, पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।
1: बड़ो लोग

0: काला सा ढंग तेरा मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर आजा चला ले चक्कर चक्कर बाकी के लौंडे पकड़ पकड़ I am the baddest motherfucker
1: हार्ट बीट

0: Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning. मैं हूँ तुम्हारी दोस्त, नाम है प्रिसिला और ऑफ कोर्स आई एम द होस्ट ऑफ मिर्ची मॉर्निंग्स। तो आज 14th of July को अगर तुम्हारा हैप्पी हैप्पी हैप्पी वाला बर्थडे है तो मैं दिल से विश करती हूँ कि तुम्हारा नया साल जो है फुल ऑन ब्लॉकबस्टर हो, हेल्थ सुपर हिट हो और हैप्पीनेस हाउस फुल हो और बैंक बैलेंस बस बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए, वेट घटते ही जाए घटते ही जाए घटते ही जाए, मतलब एक पॉइंट पर आकर रुक जाए, बिकॉज दैट्स अनहेल्दी। लेकिन अब सुनो, आज तुम्हारे साथ किसका हैप्पी वाला बर्थडे है? फीबी वॉलर-ब्रिज, द ब्रिलियंट एक्टर, राइटर एंड क्रिएटर जिन्होंने फ्लीबैक से दुनिया को अपना फैन बना दिया। देन वी हैव जेन लिंच, कॉमेडी की क्वीन जिनकी स्क्रीन प्रेजेंस एक पंचलाइन की तरह है। देन वी हैव डैन रेनल्स, इमेजिन ड्रैगन्स के पावर हाउस लीड सिंगर, एंड डैन स्मिथ, ब्रिटिश बैंड बस्टील के लीड वोकलिस्ट। तो आज अगर उनका हैप्पी बर्थडे तो काफी सही दिन वो आए हैं इस धरती पर। और आज के बर्थडे बेबीज शेयर कर रहे हैं अपना बर्थडे फॉर्मर MMA चैंपियन कॉनर मैकग्रेगर के साथ भी, और म्यूजिक इंडस्ट्री के वेल नोन एग्जीक्यूटिव टॉमी मोटोला, वो भी आज ही के बर्थडे क्लब में शामिल है। तो अगर आज तुम भी सेलिब्रेट कर रहे हो तो खुश रहो, सेफ रहो, अपनों को कॉल जरूर करना, उनका कॉल उठाना ऑफ कोर्स, एंड गिफ्ट से ज्यादा मेमोरीज बनाना। और हाँ, अपने बर्थडे शाउट आउट्स तो मुझे भेज सकते हो या फिर बर्थडे इनवाइट्स भी भेज सकते हो, कुछ नहीं तो केक के पिक्चर्स ही भेज दो। मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड and stay hot. I feel like

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
5: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
0: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
6: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में लिख रही हूँ तुम्हारे लिए खबरें फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। एडवेंचर किंग बेयर ग्रिल्स ने सोशल मीडिया पर एक थ्रोबैक फोटो शेयर की अपने मैन वर्सेस वाइल्ड एपिसोड से, फीचरिंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। साथ ही उन्होंने एक इंटरेस्टिंग लाइन भी लिखी है, द बेस्ट लीडर्स वर नेवर द लाउडेस्ट। पोस्ट में फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा और प्रिंस विलियम के साथ भी उनकी फोटोज थी। और नंबर टू पर इंडिया से लद्दाख एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का हंगर स्ट्राइक 17th दिन में एंटर कर गया है। जब उनसे फास्ट खत्म करने की अपील की गई, उन्होंने कहा, मुझे फास्ट खत्म करने को मत कहिए, सरकार से पूछिए डायलॉग क्यों नहीं हो रहा है। सिचुएशन फिलहाल काफी सीरियस है और उम्मीद यही है कि बातचीत और पीसफुल डायलॉग से सोल्यूशन निकले। एंड लास्टली, इंडियन रुपी डॉलर के अगेंस्ट 96 के लेवल से नीचे चला गया है, जो मई के बाद का वीकेस्ट लेवल है। एक्सपर्ट्स इस मूवमेंट को राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस और ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन से जोड़ रहे हैं। एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का 3 विद मी प्रिसिला। कनेक्ट विद मी इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi.
1: Iscabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
0: Mirchi, burga.
2: Hello?
3: Hello? Hello?
2: भैया आवाज साफ नहीं आ रही, कम आ रही है आवाज।
3: भाई साहब आपकी दुकान से कल एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन ले गया था, याद है आपको?
2: हाँ जी।
3: आपकी दुकान से एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन लेके गया था मैं कल।
2: अच्छा अच्छा।
3: तो ये यार ये ड्रिल मशीन कैसे दिए, ये बहुत आवाज कर रही है, एक सेकंड रुको।
2: भाई ड्रिल मशीन तो आवाज तो करेगी यार।
3: एक सेकंड यार, आवाज करेगी। आप ये बंद कर, इसको बंद कर, बंद कर, बंद कर। रमेश इसे बंद कर दे यार, आप मरवाओगे, ड्रिल मशीन आवाज करेगी, यहाँ सारे जाग जाएंगे तिजोरी खुलने से पहले।
2: मैं
3: आपको यही बता रहा हूँ, ये ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे जो मैं ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना, ये जिस कोठी में आया हुआ हूँ अभी इनकी तिजोरी खुली भी नहीं है। मैं तो ये ड्रिल मशीन यार, इसको बंद कर दे रमेश, बंद कर दे। भाई साहब ये तिजोरी मैं खोल रहा हूँ, ये आवाज बहुत कर रही है यार।
2: क्या कह रहे हो, तिजोरी ड्रिल मशीन कर क्या रहे हो आप?
3: इनके घर की चोरी कर रहा हूँ, खोपड़े में बात नहीं आती क्या तेरे यार? मुझे फंसवाएगा तू?
2: तो ड्रिल मशीन हमारा लेके तो चोरी करने गया।
3: एक तो आवाज इतनी दी है तूने, ड्रिल मशीन के सारे जाग जाएंगे यार।
2: चोरी करने के लिए
3: तुमने पहले क्यों नहीं
2: बताया? तू खुद चोरी कर रहा है, मुझे फंसवाएगा।
3: बात सुन,
2: मुझे मरवाएगा, मुझे फोन कर दिया। हेलो
3: यार, कमाल है, आप तो मेरी रोजी फिर रात मार रहे हो।
4: सर मेरी बात सुनिए, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आपकी दुकान का नंबर मुझे किसी ने दिया था, आप रेडियो मिर्ची में हैं, सब आपको सुन रहे हैं, आपके साथ मजाक किया है, मुर्गा बना दिया आपका।
2: कहाँ से बोल रहे भैया?
4: रेडियो मिर्ची से सर, आपके साथ मजाक किया है मैंने। जरा हंस के मेरे साथ एक बार।
3: अब ठीक है।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
6: इट्स हॉट।
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटवे, आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यू आमंत्रण आपे छे। शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिरजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ। शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति। 7323578200। जय गुरु।
10: Oak Tree Road లో బెస్ట్ డైమండ్ జ్యువెలరీ కోసం సర్చ్ చేస్తున్నారా? కృష్ణా జ్యువెలర్స్ మీ ఎక్స్క్లూజివ్ డైమండ్ స్టోర్.
11: టాప్ క్వాలిటీ నేచురల్ సర్టిఫైడ్ డైమండ్స్, GIA సాలిటైర్స్, నెక్లెసెస్, రింగ్స్ మరియు స్టన్నింగ్ పెండెంట్స్. కృష్ణా జ్యువెలర్స్, Oak Tree Road, Esalen.
12: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
13: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Esalen, New Jersey. Conditions apply.
14: तेरा क्या होगा कालिया?
15: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
14: अब मिर्ची खा।
16: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, मैं हूँ तुम्हारी होस्ट, नाम है प्रिसिला। चाय सिप करो, सीट बेल्ट लगाओ, क्योंकि अब हम पता करने वाले हमारे सितारे आज क्या कह रहे हैं।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: एरीज यानी मेष राशि, आज इंस्टिंक्ट पर ट्रस्ट करो। फैमिली और पार्टनरशिप में दिल और दिमाग दोनों का कॉम्बिनेशन काम करने वाला है। आज तुम्हारा लकी कलर इज पीच, लकी नंबर इज 14। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, बिजी तो बहुत रहोगे, लेकिन बिजी और प्रोडक्टिव में बहुत मेजर डिफरेंस होता है। दो इम्पोर्टेंट गोल्स पे फोकस करो और आगे बढ़ते जाओ। लकी कलर फॉर यू इज ऑलिव, लकी नंबर इज 22। जेमिनी यानी मिथुन राशि, रिसेंट केओस के बाद फाइनली अब काम मोड ऑन हो चुका है तुम्हारी लाइफ में। फाइनेंशियल पजल का सलूशन भी नजदीकी है। लकी कलर फॉर यू इज इंडिगो, लकी नंबर इज 5। कैंसर यानी कर्क राशि, फ्रेश स्टार्ट अलर्ट, आज का दिन नया चैप्टर का फर्स्ट पेज की तरह है। पास्ट को आर्काइव करो और फ्यूचर को डाउनलोड करो। लकी कलर फॉर यू इज आइवरी, लकी नंबर इज 11। लियो यानी किसी राशि, आज अजीब आइडियाज आए तो उनको इग्नोर मत करना, हो सकता है वही तुम्हारे मिलियन डॉलर आइडियाज हो। लकी कलर फॉर यू इज ब्रॉन्ज, लकी नंबर इज 31। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्गो यानी कन्या राशि, जो चीज कब से सीक्रेटली चाहते थे वो अब दूर नहीं है। कॉन्फिडेंस पे इंटरेस्ट मिलता है, इन्वेस्ट करो और आगे बढ़ो। लकी कलर फॉर यू इज ब्लू, लकी नंबर इज 8। एंड अगर तुमने अभी तक अपनी राशि नहीं सुनी है, यानी कि थोड़ी सी देर में पार्ट 2 ऑफ राशि जोन आने वाला है। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। थोड़ा सा वेट करो, मिर्चीदार गाने सुनो, जाकर मुझे फॉलो करो। मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 6 4 7 2 4 4। I'll be back in a while. Stay tuned and stay hot.

0: दिल्ली वाले, दिल्ली वाले, मुंबई वाले, चेन्नई वाले, इंदौर वाले, जो भी जहाँ से भी है, सबके लिए डिस्काउंट है, डिस्काउंट।
1: शो स्ट्रीट वाला है पर ऑफर एलीट वाला है। रास्ता चाहे जो हो, मंजिल है विरानी ज्वेलर्स, क्योंकि वहाँ मिल रहा है 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी।
2: विजिट viranijewelers.com, गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल फ्रॉम 4 जुलाई इंडिपेंडेंस डे टिल ऑगस्ट 15th इंडिपेंडेंस डे। सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
3: ओनली ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची, न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
7: एंजॉय योर गोल्डन डेज विद कल्याण ज्वेलर्स। गेट अप टू 50% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस। विजिट कल्याण ज्वेलर्स एट ओक ट्री रोड, इज़लन, न्यू जर्सी। कंडीशंस अप्लाई।
8: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
9: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
10: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
11: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
12: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
13: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
14: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
13: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
14: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
13: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
7: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.
15: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
16: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
15: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
17: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
15: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
18: एक ही होता है।
15: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: है दिल
1: तेरी चाल ढाल हाल बाल सब बवाल सब गजब तेरी चाल ढाल हाल बाल उफ़ो hips lips eyes thighs sab gazab sab gazab sab gazab

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: वेलकम बैक मेरी जान, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स और चलिए देखते हैं कि बाकी की राशियों का आज रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है.
2: मिर्ची राशि जोन.
1: लीब्रा यानी कि तुला राशि, अगले कुछ दिन लाइफ का मेकओवर मोड ऑन हो सकता है. पॉजिटिव सोचो, अपॉर्चुनिटी सेल्फी लेने खुद से आने वाली है. लकी कलर फॉर यू इज टैंजरीन, लकी नंबर इज 19. स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, एडवेंचर बुला रहा है आज. सेल्फ बिलीफ ही तुम्हारा सुपर पावर है. ड्रीम को पेंडिंग नहीं रखते है बेटा, काम करो उस पर. लकी कलर फॉर यू इज वायलेट, लकी नंबर इज 27. सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, टफ डिसीजन से भागना नहीं चाहिए. वर्ल्ड को तुम जैसे बोल्ड लोगों की जरूरत है. हीरो बैकग्राउंड म्यूजिक इमेजिन करो और आगे बढ़ते जाओ. लकी कलर फॉर यू इज पर्पल, लकी नंबर इज 3. केप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, माइंडसेट ही मैजिक है. चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी समझो और गेम को चेंज करते जाओ. लकी कलर फॉर यू इज टील, लकी नंबर इज 16. अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आज कुछ लोग अचानक समझ आएंगे, शायद प्रॉब्लम उनमें नहीं, अपडेट तुम्हारे सॉफ्टवेयर को चाहिए. लकी कलर फॉर यू इज लाइट ब्लू, लकी नंबर इज 24. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसेस यानी कि मीन राशि, एनर्जी फुल चार्ज है, हर मिनट का स्मार्ट यूज करो. फ्यूचर वाला तुम्हें थैंक यू बोलेगा. लकी कलर फॉर यू इज आक्वा ब्लू, लकी नंबर इज 12. एंड दैट्स इट फॉर राशि जोन पार्ट 2. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स. कमिंग अप आर सम मिर्ची दे आर बैंगर्स ओनली फॉर यू. तब तक के लिए मुझे फॉलो करो. मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS. And WhatsApp पर नंबर है 9033 मिर्ची, that's 9033 647224. Stay tuned and stay.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
4: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
5: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
6: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
9: तेरा क्या होगा कालिया?
10: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
9: अब मिर्ची खा।
11: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: और बस क्या, आज का मिर्ची मॉर्निंग्स का सफर यहीं तक था और अब खत्म हो चुका है। जाने से पहले एक स्माइल वर्दी अपडेट देकर जाना तो बनता है। मेरा नाम है प्रिसिला एंड क्रिकेट सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी का विंबलडन फाइनल लुक सोशल मीडिया पर फुल ऑन वायरल हो गया है। अगर तुमने नहीं देखा, यू मस्ट बी लिविंग अंडर अ रॉक। जब उनसे उनके स्टाइलिश सूट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इतनी ऑनेस्टी की बात बोली है ना कि इंटरनेट उन्हें और ज्यादा प्यार दे रहा है। उनका जवाब था, जल्दी जल्दी में जो मिला वही पहन लिया, अभिषेक भैया से बोलकर अरेंज कराया और डालकर आ गया। और ऑनेस्टली इतना ही रिलेटेबल था ना ये स्टेटमेंट। देसी लोगों का फैशन इमरजेंसी स्टार्टअप पैक यही होता है। शादी हो, पार्टी हो, एयरपोर्ट पे जाना हो, किसी फ्रेंड का बर्थडे हो, पहले पूछो यार कुछ पहनने को है तो यार कह रहे हैं बोरो। लेसन ऑफ द डे है, कॉन्फिडेंस टेलर नहीं देता है, कॉन्फिडेंस तुम्हें डिजाइनर कपड़े नहीं देते हैं, बल्कि कॉन्फिडेंस तुम्हारे खुद के एटीट्यूड से आता है। अगर स्माइल ओरिजिनल हो ना तो आउटफिट में चार चांद वैसे ही लग जाते हैं। तो बेस्ट आउटफिट दैट यू कैन कैरी इज योर कॉन्फिडेंस एंड द सेकेंड बेस्ट आउटफिट यू कैन कैरी इज योर स्माइल। और मुझे उम्मीद है कि आज की इस चाय मस्ती म्यूजिक और मॉर्निंग्स में तुम्हें अपना कम्यूट, अपना काम, अपना दिन जो है थोड़ा सा फन लगा होगा। अगर शो मिस हो गया है तो कोई बात नहीं, मुझसे कनेक्ट कर लो इंस्टा और एक्स पर। मैं रोज इसी टाइम पर आती हूँ यहाँ पर। MIRCHIPRIS इज माई इंस्टाग्राम एंड एक्स का हैंडल एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। एंड थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर मॉर्निंग्स। मिलूंगी तुम्हें कल सेम टाइम सेम प्लेस पर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। खाओ पियो ऐश करो और मिर्ची सुनते रहो, इट्स हॉट।

0: नाखून और बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं लगता है।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. और हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हम भी तो कभी बच्चे हुआ करते थे और हम कब बड़े हो गए हमें भी नहीं पता लगा यार। छोड़ो हमारे बड़ों की बातें तो वाकई में, क्योंकि याद है आपको वो टाइम जब हम एज किड्स अपने सिबलिंग से एक रिमोट के लिए लड़ा करते थे। जस्ट इमेजिन, एक रिमोट के लिए, और हमने एक सफर तय किया है यार, फ्रॉम रिमोट के लिए लड़ना विद आवर सिबलिंग्स टू नाउ वॉचिंग नेटफ्लिक्स ऑल बाय आवरसेल्व्स। पहले सब इकट्ठे होके साथ में बैठ के टीवी देखा करते थे, तो एक रिमोट पे फाइट होती होती थी कि कौन सा चैनल लगेगा, किसका शो देखने को मिलेगा, कौन सा वक्त हो रहा है और किसका शो मिस हो रहा है। इन सारी चीजों पर लड़ाइयां होती रहती थी और घर में ना रौनकें लगी रहती थी। अब ऐसा हो गया है कि सब अपने अपने टाइम पर आते हैं, अपना अपना शो देखते हैं और चले जाते हैं। इट्स मोर लाइक दैट। इनफैक्ट कितने घरों में तो हाल ये भी है कि अब बहन भाई जो है वो एक छत के नीचे भी नहीं रहते हैं, अपने अपने घरों में अपनी अपनी जगह पर बैठ के अपने अपने शोज देख रहे होते हैं और यही मिस कर रहे होते हैं कि हाय ये एक रिमोट जिस पर आज पूरी तरीके से मेरा हक है उस पर सबका हक हुआ करता था और सब उस हक के लिए लड़ा करते थे। लेकिन आज बड़ा बुरा सा लगता है यार जब एक पूरा रिमोट हमारे ही हाथों में और उस पर कोई लड़ने वाला नहीं होता, और बन जाती है हमारे दिल की एक कहानी जिसका नाम होता है किस्सा रिमोट का। चलो जी, विद दिस मिड मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालते हुए आपसे कहती हूँ स्टे ट्यून विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: चाहता है।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
4: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
3: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
5: नो
6: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 years ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय ASE सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
2: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
7: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islington.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: तुम जानो ना, हम गाना भी था और फिर एक पिक्चर भी बनी. याद है आपको ये फिल्म?
0: मिर्ची VCR.
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. और अगर हम ये सोच रहे हैं ना कि यार ये कहीं गाने से तो रिलेटेड नहीं है, तो हम सही सोच रहे हैं. बिकॉज ना तुम जानो ना हम वॉज अ वेरी फेमस ट्रैक ऋतिक रोशन की मूवी कहो ना प्यार है का. और वो गाना इतना फेमस हो गया था कि फिल्म मेकर्स ने सोचा कि अगर इसके नाम पर फिल्म बना दी जाए तो वो भी फेमस हो ही जाएगी. लेकिन अफसोस, ये फिल्म उतना अच्छा तो नहीं कर पाई जितना कि ऑफकोर्स कहो ना प्यार है ने किया. एंड फिल्म मेकर्स को ऋतिक रोशन को इस फिल्म में कास्ट करने का वो फायदा नहीं हुआ जो होना प्यार है में हुआ था. लेकिन दिस फिल्म विच स्टार्ड ऋतिक रोशन, सैफ अली खान एंड ईशा देओल स्टिल वॉज समवेयर क्लोज टू एवरीबडीज हार्ट, क्योंकि बड़ी क्यूट सी फिल्म थी यार. लेकिन बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता है कि ये जो फिल्म की स्टोरी है ना, ये फिल्म की स्टोरी जो इस फिल्म के डायरेक्टर है उनके पेरेंट्स की स्टोरी है. द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, जिनका नाम है अर्जुन सबलोक, उन्होंने डिसाइड किया कि उनके पेरेंट्स की जो स्टोरी है उसको एक फिल्म में तब्दील किया जाए. एंड माय व्हाट डू वी से अबाउट इट. मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं इस चीज को कैसे बोलूं कि अंकल आंटी की लव स्टोरी फिल्म ही थी या फिर ये कहानी इज रियलिटी. एंड अर्जुन सबलोक ने एज अ डायरेक्टर ना तुम जानो ना हम से डेब्यू किया था. हालांकि ये एक एक्टर भी रहे हैं और बहुत ज्यादा कुछ काम नहीं किया इन्होंने, लेकिन द एपिक दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में इन्होंने एक्टिंग करी है यार. शाहरुख खान के दोस्तों की जो टोली थी ना, उनमें से एक थे करण जौहर और उनके एक और फ्रेंड थे लंबे चौड़े से, दैट वॉज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, अर्जुन सबलोक हिमसेल्फ. एंड वैसे जब इस फिल्म की शूट हो रही थी ना, दैट टाइम अर्जुन सबलोक और सैफ अली खान इन दोनों के बीच में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए रिगार्डिंग द फैक्टर कि सैफ अली खान का जो रोल है वो इस फिल्म के अंदर काफी छोटा है. एंड सैफ अली खान को लगता था कि उनके ज्यादा सीन्स होने चाहिए इन द फिल्म. एंड ही केप्ट ऑन इंसिस्टिंग कि एक सॉन्ग ऐड कर दिया जाए और यू नो कुछ और एडिशंस कर दिए जाए. और इस चीज को लेकर इनके जो आर्ग्यूमेंट्स थे, दे वेंट ऑन टू बी अनएंडिंग. वहीं दूसरी तरफ एक छोटा सा रोल ईशा देओल की बेस्ट फ्रेंड ने भी किया है, जो कि इस फिल्म में भी ईशा देओल की बेस्ट फ्रेंड है. सो बेसिकली शेफ चीनू वाजे, जो कि इस फिल्म में ईशा देओल की बेस्ट फ्रेंड का रोल प्ले कर रही हैं, वो रियल लाइफ में भी ईशा देओल की बेस्ट फ्रेंड है. एंड नाउ शी इज बिकम अ शेफ और वो और उनके हस्बैंड जो है वो मिलकर एक गोमे केटरिंग बिजनेस करते हैं. लेकिन हाँ, शेफ चीनू वाजे ने भी कभी एक्टिंग करी थी एंड आई थिंक दिस वॉज द ओनली प्रोजेक्ट शी डिड एज एन एक्टर. एंड इफ यू रियली वॉन्ट टू नो हु दिस is तो शेफ चीनू वाजे करके आप डालेंगे ना, आपको इंस्टाग्राम पे मिल ही जाएगा उनका अकाउंट. कमिंग अप मोर ऑन द फिल्म ना तुम जानो ना हम, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: गैजेट। मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए। 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में। सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
1: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
5: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
4: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
6: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।
7: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
8: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
7: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
8: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
9: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
10: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
11: It's 11:30 a.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
12: Listener mein back to back gana sunega. Back to back gana sunega.
13: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
14: Yeah. Wanna feel that? Come on, girl. Be the beat.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इसलिन।
4: इसलिन न्यू जर्सी। Yes, you heard that right. That's the brand new Joy Alucard's destination in the USA. Be among the first to celebrate our grand opening with an unbeatable inaugural offer of flat 30% off on baking charges. Shop before 19 July and receive assured gifts with every purchase. Visit us at 42 Marconi Avenue, Esalen, New Jersey and discover exquisite collections crafted for every celebration. Inaugural offer valid until 26th July 2026. TNC apply. Joy Alucard's, world's favorite jeweler.
5: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।
6: I enjoy using inefficient and complex software, mama.
7: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
3: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ privacy और protection का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
8: तेरा क्या होगा कालिया?
9: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
8: अब मिर्ची खा।
10: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Na tum jano na hum. Jab ye film bani, to iske saath saath ek kahani bhi bani. Jahan Rakhi Sawant ne, jo is film ke director hain, Arjun Sablok, un par ek ilzam lagaya.
0: Mirchi. Chat room.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. And well, राखी सावंत जो उस जमाने में बोल्ड अपीयरेंसेस के लिए बहुत फेमस थी, आज वो बोल्ड स्टेटमेंट्स के लिए हैं, लेकिन एट दैट टाइम बोल्ड अपीयरेंसेस के लिए बहुत फेमस हुआ करती थी. और उस टाइम पर उन्होंने एक और कंट्रोवर्सी क्रिएट करी, एंड आज वो बोल्ड स्टेटमेंट्स के लिए हैं, लेकिन एट दैट टाइम बोल्ड अपीयरेंसेस के लिए बहुत फेमस हुआ करती थी. और उस टाइम पर उन्होंने एक और कंट्रोवर्सी क्रिएट करी, एंड दैट वॉज

0: श्योर कि यार वो जो बंदी है वो उन कपड़ों के अंदर एस्थेटिकली सही बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि इट वॉज नॉट जस्ट राखी सावंत बल्कि और भी लड़कियां थी इस फिल्म के अंदर जो कि हॉट बेब्स का रोल प्ले कर रही थी और उनको भी तरह तरह के कपड़े पहना कर चेक किया गया था जिसमें कि इंक्लूडेड थी अचला सचदेव एज वेल। बट उन्होंने इस बात की क्लैरिटी भी दी कि जिन लोगों को मसाला चाहिए उनको मसाला मिलेगा नहीं, बिकॉज मैंने राखी सावंत को पर्सनली ऑडिशन नहीं किया था, मेरी टीम ने ऑडिशन किया था। इनफैक्ट उस टीम में जिसने ऑडिशन किया था वो खुद एक बंदी थी। देखो यार, मुझे तो हमेशा से इस बात से थोड़ी सी दिक्कत ही रही है जहां पर यू नो फीमेल्स को ऑब्जेक्टिफाई किया गया है, बट वो पार्ट अलग है। अब वो मूवीज का एक ऐसा पार्ट है जिसमें कि आई डोंट थिंक आई हैव एनी से, बट यहाँ पर आई वुड जस्ट से वन थिंग, क्लियरली कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट करना कोई राखी सावंत से तब भी सीख सकता था और आज भी सीख सकता है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: यू आर लिसनिंग टू 103.3 FM HD2 WPRP प्रिंसटन न्यू जर्सी एंड 92.7 W224 CW फ्रैंकलिन पार्क न्यू जर्सी, रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की जब शादी हो रही थी ना, तो यार ये शादी की कवरेज जो है ये तो हर एक न्यूज चैनल पर नजर आ रही थी, लेकिन इस शादी के अलावा एक बर्बादी की कवरेज भी चल रही थी।
0: मिर्ची फिल्मी गुल्लक।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और अगर आपको याद नहीं है ना, तो मैंने सोचा आपको याद दिला दूं वो टाइम जब हम सब वर ग्लूड टू द टेलीविजन स्क्रीन्स वाचिंग अभिषेक बच्चन एंड ऐश्वर्या राय की शादी का कोई तो भी फुटेज जो हमें दिख जाए। वो उनके बंगले के बाहर के ही फुटेजेस होते थे ज्यादातर, तो अंदर क्योंकि एक्सेस नहीं था ऑफकोर्स प्रेस को, लेकिन हम तब भी टेलीविजन पर चिपके हुए थे कि यार कुछ तो दिख जाए, यार कुछ तो दिख जाए, कौन सा सेलिब्रिटी आ रहा है, कौन सा सेलिब्रिटी जा रहा है, कैसे लग रहे हैं दूल्हा दुल्हन। और जब बारात की फुटेज दिखाई तो सब पागल ही हो गए यार। मुझे तो आज भी याद है अभिषेक बच्चन की शेरवानी और उनके साफे पे वो जो कलगी थी ना, इतना खूबसूरत था ना वो ब्यूटीफुल सा ब्रूच जिसको कि कलगी कहते हैं, जो उन्होंने अपने साफे पे पहना हुआ था। एनीवेज, मैं काफी बह गई हूँ उस दिशा में, लेकिन आते हैं इस दिशा में जहां पर उनकी शादी के फुटेज के अलावा एक और बर्बादी का फुटेज था, एंड दैट वाज जानवी की बर्बादी का फुटेज। नहीं नहीं, हम जानवी कपूर की बात नहीं कर रहे हैं, श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर की बात नहीं कर रहे हैं। देयर वाज दिस अनदर जानवी जो कि अभिषेक बच्चन की शादी के वेन्यू के बाहर हो हल्ला मचा रही थी, और उसका ये क्लेम था कि अभिषेक एंड जानवी आर इन लव, दे हैव गॉटन मैरिड एंड दे हैव हैड अ रिलेशनशिप एंड पता नहीं क्या क्या करके उस बंदी ने जो ड्रामे करे। हमें लगा था अगली राखी सावंत आ गई है, और ये बंदी अभिषेक बच्चन के साथ काम कर चुकी थी। वो गाना नहीं था, 10 बहाने करके ले गए दिल। उस गाने के अंदर जो बैकग्राउंड में डांसर्स काम कर रहे हैं, उनमें से एक वाज दिस बंदी जानवी। एंड हुआ क्या? वेल, हुआ कुछ भी नहीं। वो एक दिन था, दो दिन ज्यादा से ज्यादा जब इस बारे में हो हल्ला मचा, उसके बाद ये बंदी कहां गई पता ही नहीं लगा। एंड देन कट टू वो टाइम जब जानवी कपूर श्रीदेवी की बेटी का लॉन्च हुआ, एट दैट टाइम हमने ये नाम सुना था। इस दौरान हमने कहीं पर भी इस जानवी का जिक्र तो नहीं सुना था यार। अगर आपने कोई जानकारी हासिल करी है इस बंदी के बारे में अपार्ट फ्रॉम व्हाट आई हैव, तो डू लेट मी नो, ये गॉसिप ऑन एयर भी शेयर की जाएगी। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear Phantom Wali Meethi Cigarette.
2: यादों को चिट्ठी।
1: बचपन में बुरी नहीं मीठी आदत थी तुम। तुम्हें पीकर ना स्वैग मारना और फिर आईने को ताड़ना ये देखने के लिए कि होठ पर तुम्हारी रेड एंड व्हाइट रंग की लाली लगी कि नहीं। बाकी जब तुम्हें गर्मियों में पिया करते थे ना तो उंगलियों के पसीने से तुम पिघल जाया करती थी और ऐसे पिघलती थी जैसे कि आज मैं अपनी बहन के मनाने पर भी नहीं पिघलती हूँ यार। एक डब्बा तुम्हें लाया करते थे और लंबा चलाया करते थे और तुम्हें होठों के बीच दबाकर 80s के किसी विलन की तरह लुक देते हुए एक्ट तो ऐसे करते थे जैसे कोई इम्पोर्टेंट शख्सियत हो हम। आज जब अडल्ट्स को स्मोक करते हुए देखती हूँ ना तो कभी कभी हंसी छूट जाती है कि कभी हम ये बनने की कोशिश किया करते थे तुम्हें उंगलियों में दबाकर और अपना स्वैग दिखाकर। और आज जो दोस्त तुम्हारी बड़ी बहन यानी कि असली सिगरेट को जलाते हैं ना अब हम उन्हें इस आदत को छोड़ने को कहा करते हैं। बचपन का लेंस बड़प्पन के लेंस से कितना डिफरेंट होता है नहीं। तुम्हारी खास मिठास को याद करती हुई तुम्हारी सारा। यू ट्यून इन विद मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए। 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में। सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
1: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
2: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
3: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
5: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
5: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Islin.
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
7: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
4: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
8: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।
9: तेरा क्या होगा कालिया?
10: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
9: अब मिर्ची खा।
11: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Oh no!
0: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
4: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
5: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
4: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: उदित नारायण, हरिहरन और कैलाश खेर की आवाज में दिस गाना फ्रॉम द फिल्म स्वदेश इज कैसेट के साइड बी का चौथा गाना.
2: मिर्ची 90s कैसेट.
1: वेल, ये गाना मुझे गाना कम और जुगलबंदी ज्यादा लगती है बिटवीन द महारथी सिंगर्स, हाँ, हरिहरन, कैलाश खेर एंड उदित नारायण. और इसी वजह से ये गाना जो है ये फिलोसफिकल भी हो जाता है और साथ ही साथ ना थोड़ा सा नाटक, नौटंकी और शैतानी भी इस गाने के अंदर सुनाई देती है. बट ये गाना ना बड़ी ही सही बात कर रहा है. इट ऑल्सो इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल जहाँ पर एक बंदा इज टोटली पॉजिटिव अबाउट लाइफ एंड वट हैज टू हैपन इन फ्यूचर एंड द अदर वन इज अ लिसनर जो अभी कंफ्यूज है कि यार मेरी लाइफ में होने क्या वाला है. तो बंदा जो पहला वाला है, जो पॉजिटिव वाला बंदा है, वो बड़े सही तरीके से कहता है कि ये रास्ता है, कह रहा अब मुझसे, कि मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे. अगला कहता है कि यार दिल को है क्यों ये बेताबी और किससे मुलाकात होनी है, जिसका कब से अरमा था शायद वही बात होनी है. और यहाँ पर दिल लगाने की बात की जा रही है क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम ना अपने उस इंसान के लिए इंतजार कर रहे होते हैं और कभी कभी हमारा दिल कह रहा होता है ना कि यार कुछ अच्छा होने वाला है, कोई आने वाला है. एक आहट सी आपको महसूस हो रही होती है बिना उस इंसान के आए और बिना आपके ये जाने कि वो इंसान कौन होगा. एंड दिस इज अ फीलिंग जो उसी को पता है जिसने कभी महसूस करी. और अगर आप वो इंसान हो ना तो मुझे DM करके अपनी स्टोरी जरूर बताना. माय इंस्टाग्राम हैंडल इज मिर्ची सारा. अभी के लिए यही गाना आपके लिए लगाती भी जा रही हूँ और आपसे कहती हूँ हम है रही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते. आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा एंड स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची 'cause it's hot.

1989 की फिल्म मैंने प्यार किया, जिसने सलमान खान को रातों रात सुपरस्टार बना दिया था। मिर्ची सुन रहे आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लोगों को लगा अब इस बंदे की हिट पे हिट पे हिट पे हिट फिल्में आई थी, एक दो आई भी जैसे कि बागी, साजन, सनम बेवफा, लेकिन उसके बाद धड़ल्ले से फ्लॉप फिल्में जैसे कि पत्थर के फूल, सूर्यवंशी, जागृति, निश्चय, एक लड़का एक लड़की, चंद्रमुखी, दिल तेरा आशिक, ये सब चलता रहा 1994 तक। लेकिन उनके सितारे फिर बदले 1994 में जब आई हम आपके हैं कौन, जिसने लड़के को फिर से स्टार बना दिया। वैसे सलमान खान और दीवार फिल्म में क्या रिश्ता है? इनके पिताजी ने लिखी थी दीवार फिल्म, सलीम खान साहब अलोंग विद जावेद अख्तर साहब। दीवार फिल्म का गाना सुनेंगे यहाँ पर पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्च।

1973 की फिल्म सौदागर। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इस फिल्म में थी नूतन, साथ में थे अमिताभ बच्चन। उनकी जगह पे पहले ना इस फिल्म में संजीव कुमार होने वाले थे, लेकिन क्या हुआ था, 1970 की फिल्म देवी की फिल्म की शूटिंग के दौरान, जिसमें अगेन नूतन एंड संजीव कुमार थे, नूतन जी को ऐसा पता चला कि संजीव कुमार उनके रिलेशनशिप के रूमर्स फैला रहे हैं, जबकि नूतन जी ऑलरेडी मैरिड थी, उनका बेटा भी था, तो उनको ऐसा पता चला कि वो उनके आपस में रिलेशनशिप के रूमर्स फैला रहे हैं। इस बात को लेकर जब उन्होंने संजीव कुमार जी को कन्फ्रंट किया तो संजीव कुमार जी ने इस बात को डिसमिस कर दिया और थोड़ा इनडिफरेंट एटीट्यूड दिखाया, जिससे नूतन जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने सेट पे सबके सामने संजीव कुमार जी को थप्पड़ मार दिया, जिसकी वजह से फिर नूतन जी के हाथ से काफी फिल्में छूट गईं, काफी फिल्मों से संजीव कुमार भी अलग हो गए, एंड सौदागर वॉज वन सच फिल्म। चलिए लड़ाई झगड़ा साइड करते, लव इश्क प्यार मोहब्बत वाला गाना सुनते। कुछ ज्यादा ही लव इश्क प्यार मोहब्बत था इस गाने में, दयावान का ये सुपर रोमांटिक गाना। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

0: मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए। 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में। सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
1: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
5: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
5: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Islington.
6: Inefficient,
7: very complex,
8: clumsy और
9: confusion ही confusion.
5: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ, अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
3: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
10: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islington.
11: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
12: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
11: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
13: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
11: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
14: एक ही होता है।
11: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
15: It's 1:30 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
16: Purani jeans. With Charu. Only on

ऐसा सुनने में आता है कि इस फिल्म के दौरान चुपके चुपके जिसका हमने गाना सुना, धर्मेंद्र साहब प्लेड लिटिल डर्टी। वो कैसे? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वो ऐसे कि डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी ने आशा पारेख जी को प्रॉमिस किया था कि वो उनको इस फिल्म में कास्ट करेंगे, लेकिन क्योंकि तब धर्मेंद्र बहुत बड़े स्टार थे, ही समहाउ वांटेड टू वर्क विद शर्मिला टैगोर इन दिस फिल्म, एंड किसी तरह से ऐसे वैसे जैसे तैसे करके उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी को कन्विंस कर लिया कि शर्मिला टैगोर को इस फिल्म के लिए कास्ट किया जाना चाहिए। एंड आशा पारेख जी वॉज कम्प्लीटली साइडलाइंड इस बात को लेकर। वो ऋषिकेश मुखर्जी से एंड धर्मेंद्र से काफी टाइम तक नाराज रही थी। बिल्कुल नाराजगी बनती है अगर ऐसा हुआ था तो। और अभी कैसा है कि ब्रेक लेंगे हम, म्यूजिकल ब्रेक, जहां गाना सुनेंगे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
5: अब मिर्ची खा।
7: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Purani Jeans with Charu only.

1981 की फिल्म नसीब का ये गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और यही थी वो फिल्म जिसके गाने से फारा खान को इंस्पिरेशन मिली थी ओम शांति ओम में वो वाला गाना इंक्लूड करने की, जिसमें इतने सारे फिल्म स्टार्स थे। और नसीब फिल्म में वो गाना कौन सा था? जॉन जॉनी जनार्दन तररम पम पम पम पम। और इसमें जो इतने सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस आए थे ना, उनको जमा करने की जिम्मेदारी पता है किसकी थी? अच्छा, फिल्म तो मनमोहन देसाई साहब ने ये डायरेक्ट की थी, लेकिन इन एक्टर्स को जमा करने की जिम्मेदारी थी राज कपूर साहब की। इनफैक्ट ये पूरा का पूरा गाना जो है वो आरके स्टूडियोज में शूट हुआ था। जॉन जॉनी जनार्दन, इसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा है प्लीज देखें, मजा आ जाएगा। और अभी सुनेंगे वो गाना जो बड़ा क्यूट टाइप का रोमांटिक है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्च।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

प्रेम पुजारी फिल्म का ये गाना, लेकिन इस फिल्म के दौरान प्रेम का एक धागा टूट गया था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। प्रेम नहीं, एक्चुअली ये दोस्ती का धागा टूट गया था। भाई देवानंद साहब और मदनपुरी साहब की बहुत अच्छी खासी पुरानी दोस्ती थी, जिसमें इस फिल्म के दौरान दरार पड़ गई। मदनपुरी साहब एक और फिल्म साइन करना चाहते थे जिसका नाम था नन्ना फरिश्ता। अभी सीन कुछ यूं हुआ कि प्रेम पुजारी फिल्म के लिए जो उन्होंने डेट्स दे रखी थी, उन डेट्स में से 5 दिन निकाल के उनको उस फिल्म को देने थे। उन्होंने देवानंद साहब से रिक्वेस्ट की और ऐसी कुछ बात हुई कि देवानंद साहब थोड़ा गुस्सा हो गए, वो मदनपुरी साहब पे चिल्ला दिए, उनको वो 5 दिन नहीं मिले और दूसरी फिल्म उनके हाथ से निकल गई। इस पर मदनपुरी साहब उनसे काफी नाराज हो गए। बाद में दोनों ने फिल्मों में साथ काम किया, लेकिन उन्हीं फिल्मों में जिनका काम पहले से चल रहा था या किसी प्रोफेशनल रीजन की वजह से। पर्सनल रिश्ता फिर वैसा रहा नहीं। वो क्या बोलते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोरो चटकाए, टूटे ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन.
5: ओक ट्री रोड लो बेस्ट डायमंड ज्वेलरी कोसम सर्च इस्तनारा कृष्णा ज्वेलर्स मी एक्सक्लूसिव डायमंड स्टोर.
6: टॉप क्वालिटी नेचुरल सर्टिफाइड डायमंड्स, GIA सॉलिटेयर्स, नेकलेसेस, रिंग्स, मरियु स्टनिंग पेंडेंट्स. कृष्णा ज्वेलर्स, ओक ट्री रोड, इसलिन.
7: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
8: बैक टू बैक गाना सुनेगा.
7: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
9: दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है. No really, I mean it. और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

1988 की सुपर डुपर हिट फिल्म कयामत से कयामत तक का सुपर डुपर से भी ऊपर हिट गाना इट इज सॉर्ट ऑफ एन एंथम पापा कहते हैं ये हमने सुना। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और इस फिल्म में आमिर खान का किरदार जिस पापा के लिए गाना गा रहा है दैट पापा इज प्लेड बाय दिलीप ताहिल साहब। एंड दिलीप ताहिल साहब को बुनियाद टीवी शो जो उस टाइम मिड 80s में दूरदर्शन पे आता था, बहुत ही पॉपुलर शो था, उसमें उनका काम देखकर प्रोड्यूसर नासिर हुसैन साहब ने उनको साइन किया था। एंड टॉकिंग अबाउट दिलीप ताहिल साहब ना, अगर आप उनका इंस्टाग्राम फॉलो करोगे ना तो आपको मजा आ जाएगा, बहुत एंटरटेनिंग है वो। वहां पे खुद ही के ऊपर बने मीम्स वो शेयर करते रहते हैं और जितने भी ट्रेंड्स चलते हैं सबको फॉलो करते हैं। तो उनका आईडी है @dalip dalip thil ताहिल दलीप ताहिल। वेल, मेरा आईडी ऑन इंस्टाग्राम इज @rj.charu rj.charu। और अभी हम सुनेंगे वो गाना जो कि है फ्लर्टेशन का पापा गाना। This is also an anthem. Aradhana film ka ye gana, composed by S.D. Burman, written by Anand Bakshi, sung by Kishore Kumar. Purani jeans par main hoon charu aapke saath, aap sun rahe hain Mirchi.

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: आ जाओ आगरा वाले, दिल्ली वाले, दिल्ली वाले, मुंबई वाले, चेन्नई वाले, इंदौर वाले, जो भी जहां से भी है, सबके लिए डिस्काउंट है डिस्काउंट।
2: शो स्ट्रीट वाला है पर ऑफर एलीट वाला है। रास्ता चाहे जो हो, मंजिल है विरानी ज्वेलर्स, क्योंकि वहाँ मिल रहा है 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी।
3: विजिट viranijewelers.com, गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल फ्रॉम 4 जुलाई इंडिपेंडेंस डे टिल ऑगस्ट 15th इंडिपेंडेंस डे। सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
4: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: Oh no!
8: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 years ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय ASE सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रांसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
9: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस, रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।
10: तेरा क्या होगा कालिया?
11: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
10: अब मिर्ची का।
12: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
13: It's 2:30 PM. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price.
0: Purani jeans. Purani jeans. With Charu. Only.

0: हाय, गाना मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ और मिर्ची। तीन देवियां फिल्म का ये गाना, और अब जो गाना सुनने वाले हैं ना वो भी मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। आई एम श्योर आपको भी पसंद है। मंजिल फिल्म का रिमझिम गिरे सावन।
1: जी वही गाना जिसमें अमिताभ बच्चन एंड मौसमी चटर्जी ऐसे बारिश में मतलब मजे में घूम रहे हैं, बारिश भी इंजॉय कर रहे हैं, रोमांस भी कर रहे हैं। तो इस आइकॉनिक पिक्चराइजेशन के पीछे की कहानी ये है कि डायरेक्टर बासु चटर्जी ने इन दोनों को फुल फ्रीडम दी थी टू इम्प्रोवाइज। बॉम्बे की अलग अलग लोकेशन पे जाया गया जब बारिश हो रही थी और इस गाने को शूट किया गया, तो उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे, इनका जो मेकअप था, वो सब ऐसे धुल रहा था बारिश में साथ साथ, लेकिन शूटिंग ऑन थी। तो पूरा का पूरा क्रू अलोंग विद दीज टू वो ऐसे हॉप कर रहे थे अलग अलग लोकेशंस पे गाना शूट करने के लिए, बिना किसी कोरियोग्राफी के, बिना किसी प्लानिंग के, और इसीलिए शायद वो इतना ब्यूटीफुल निकल कर आया है। तो सुन लेते हैं ये गाना पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
4: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
5: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
6: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
7: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
7: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इज़लिन।
8: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
9: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
8: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
10: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
8: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
11: एक ही होता है।
8: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्टनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। मिर्जा गालिब का ये शेर बड़ा अच्छा लगता है यार मुझे। और घर के ऊपर गुलजार साहब ने क्या लिखा है, आईना देखकर तसल्ली हुई, आईना देखकर तसल्ली हुई, हमको इस घर में जानता है कोई। और एक और मुझे बहुत पसंद है, ये लिखा है उम्मीद फाजली साहब ने, ये सर्द रात ये आवारगी ये नींद का बोझ, ये सर्द रात ये आवारगी ये नींद का बोझ, हम अपने शहर में होते तो घर गए होते। होए होए। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची के साथ
1: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

1969 की फिल्म दो रास्ते, मिर्ची सुन रहे हैं आप। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये फिल्म ना राजेश खन्ना साहब की शुरुआती फिल्मों में से एक है, जहाँ पे स्टोरी ऐसे उनके आसपास रिवॉल्व नहीं करती है। इट्स अ फैमिली ड्रामा काइंड ऑफ अ थिंग। और इसमें आप इनका लुक भी देखें ना, तो ऐसे दाढ़ी बढ़ा के अनशेवन से घूमते रहते हैं, बिकॉज वो दो फिल्मों में इत्तेफाक और ये वाली फिल्म दोनों में साथ में काम कर रहे थे, तो दाढ़ी बनाने का टाइम ही नहीं था उनके पास। एक सेट से निकल कर दूसरे सेट में घुस जाते थे वो। अच्छा, ये फिल्म ना दिसंबर 1969 में रिलीज हुई थी और सुपर डुपर हिट हो गई थी। फिल्म अच्छी थी, लेकिन एक्चुअली इसको सुपर डुपर हिट कराने का थोड़ा सा क्रेडिट सितंबर 1969 में रिलीज हुई आराधना को भी जाता है, बिकॉज इस फिल्म के बाद राजेश खन्ना साहब ऐसे धरती पछाड़ आसमान फाड़ सुपरस्टार बन गए थे। इनफैक्ट आराधना के ब्लॉकबस्टर होने का फायदा उसके बाद राजेश खन्ना साहब की रिलीज हुई काफी फिल्मों को मिला। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू linemtg.com.
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
3: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन.
5: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
6: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
5: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
7: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
8: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
0: Purani Jeans with Charu, only on

त्रिशूल फिल्म का गाना मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। आपको पता है त्रिशूल फिल्म में अपनी परफॉर्मेंस के लिए अमिताभ बच्चन साहब बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए थे, लेकिन इस फिल्म के लिए उनको फिर अवार्ड नहीं मिला था क्योंकि उनको डॉन फिल्म में अपनी परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड मिल गया था उसी साल 1979 के फिल्म फेयर अवार्ड में। यस, दोनों फिल्म्स के लिए वो नॉमिनेटेड थे बट उनको अवार्ड डॉन फिल्म के लिए मिला। उससे पहले एक साल पहले अमर अकबर एंथनी में अपनी परफॉर्मेंस के लिए ऑलरेडी वो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीत चुके थे। तो ये वो कंजेकेटिव ईयर्स थे जब बच्चन साहब को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था 1978 and 79। एंड रिवाइंड टू 1975, बच्चन साहब की जमीर फिल्म का ये गाना सुनेंगे पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए।

0: बजट। मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए। 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में। सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
1: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
2: It's 3:30 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटवे, आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यू आमंत्रण आपे छे। शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिवजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ। शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति। 7323578200। जय गुरु।
6: मैनू नवे नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है जदे एक दूजे दे नाल काम ना करे।
7: आई एंजॉय यूजिंग इनएफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर मामा।
8: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
2: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One इज एन ऑल इन वन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सुइट जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। यस, योर एंटायर बिजनेस। Zoho One इज इजी टू यूज, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One। गेट योर फ्री ट्रायल एट zoho.com/one।
9: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
10: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
11: Tera kya hoga, Kalia?
12: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
11: Ab, mirchi kha.
13: Radio Mirchi, it's hot.
14: Purani Jeans with Charu, only on

ये तो हमें पता है कि शोले फिल्म ने बहुत अलग अलग फिल्मों से इंस्पिरेशन ली है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एंड वन सच फिल्म इज 1971 की सुपरहिट फिल्म मेरा गांव मेरा देश। दोनों फिल्म में क्या सिमिलैरिटीज? दोनों फिल्म में एक डिसेबल्ड अथॉरिटी फिगर होता है जो गुड हार्टेड गुंडों को हायर करता है डाकुओं से लड़ने के लिए। मेरा गांव मेरा देश में सिर्फ धर्मेंद्र इस तरह के गुड हार्टेड गुंडे होते हैं, शोले में अमिताभ बच्चन एंड धर्मेंद्र। मेरा गांव मेरा देश में ये डिसेबल्ड अथॉरिटी फिगर का रोल प्ले करते हैं जयंत साहब, जो इंटरेस्टिंगली अमजद खान साहब के फादर थे। एंड शोले में ये रोल संजीव कुमार प्ले करते हैं। शोले में विलन का नाम गब्बर सिंह और मेरा गांव मेरा देश में विलन विनोद खन्ना का नाम जब्बर सिंह। चलिए मेरा गांव मेरा देश का ये गाना सुनते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
5: लिसनर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
6: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
5: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot

दोस्तों मंडे का तो अपना स्टारडम होता है और फ्राइडे की अपनी अलग फैन फॉलोइंग। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप, ना हूँ आपकी मिर्ची सिद्दी, लेकिन हमारा जो मंगलवार है वो बॉलीवुड फिल्म के उस सीन की तरह होता है जहाँ कहानी क्वाइटली आगे बढ़ रही होती है। हीरो भी आ चुका होता है, हीरोइन से मुलाकात हो चुकी होती है, विलन का भी हिंट मिल ही गया होता है और ऑडियंस बस ये देखना चाहती है कि अब आगे क्या होगा। बिल्कुल हमारे वीक की तरह मंडे की एंट्री तो हो गई, अब पिक्चर अपनी रिदम पकड़ चुकी है और वैसे भी ये जो हफ्ता है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, तो एक्साइटमेंट का बैकग्राउंड म्यूजिक ऑलरेडी बज रहा है। तो चलिए इस ट्यूजडे की स्टोरी को थोड़ा फिल्मी बनाते हैं, मूड हल्का रखते हैं, ट्रैफिक को थोड़ा बैकग्राउंड आर्टिस्ट बना देते हैं और बॉलीवुड का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। और मुझे बताइए दोस्तों, अगर आपके इस हफ्ते का जॉनर चूज करना हो तो वो बॉलीवुड का कौन सा जॉनर होगा? रोमांस, कॉमेडी, थ्रिलर या फुल ऑन फैमिली ड्रामा? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्दी SIDDHI। और चलिए इस ट्यूसडे यानी मंगलवार की फिल्म का अगला सीन शुरू करते हैं इस जबरदस्त बॉलीवुड गाने के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana.
2: Rambala.
1: Murga, murga. La vieja la murga.
2: Mirchi, murga.
3: Hello.
4: Good evening, Mr. Srivastav. I'm modern school se bol raha hu, aapke bete ke school se. How are you?
3: Thank you.
4: अतुल वैसे पढ़ाई लिखाई में यहाँ पे बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहा है, उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिल्कुल आगे नहीं है।
3: I know, वो खेल में कुछ ऐसा है नहीं खास ज्यादा।
4: हाँ, नहीं वही मैं आपको बताना चाह रहा था। अच्छा मिस्टर श्रीवास्तव, क्योंकि हम 26 जनवरी पे एक फंक्शन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पेरेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करें। पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा परफॉर्म वो करेंगे उसके मार्क्स बच्चे को दिए जाएंगे। यू नो
3: परफॉर्म मतलब क्या, परफॉर्म क्या करना होगा हमको?
4: कुछ भी ऐसा करिएगा जो कि बच्चों की चीज हो। आप प्लीज आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करिए। आप आओ मिलो शिलो शालो करिए ना यहाँ पे आके स्टेज पे।
3: मतलब ये कोई गेम है क्या ये?
4: आओ मिलो शिलो शालो,
3: मतलब पेरेंट्स को परफॉर्म करना होगा?
4: वो सिर्फ आप ही को परफॉर्म करना होगा, आप ही को ये पूरा बोलना होगा आओ मिलो शिलो शालो। एक्चुअली प्रॉब्लम भी है, हमारे पास चार ही थे उसमें से यही बचा है। आओ मिलो शिलो शालो अगर आप ले सकते हैं तो आप इसे प्लीज परफॉर्म कर लीजिए ताकि उसके मार्क्स अच्छे आए। राइट, देखिए शुरू ऐसे होता है, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। राइट, और इसमें बीच में ना क्लैप करना होता है इस तरह।
3: आओ मिलो
4: शिलो शालो,
3: शालो
4: कच्चा
3: धागा,
4: रेस
3: लगा लो,
4: दस
3: पत्ते तोड़े,
4: एक
3: पत्ता कच्चा।
4: इसको ना प्रैक्टिस करिएगा, आप तेज से बोलेंगे दस पत्ते तोड़े
3: तोड़े
4: या मिस्टर श्रीवास्तव, दस पत्ते तोड़े
3: दस पत्ते तोड़े,
4: हिरण का बच्चा, हिरण का बच्चा, सब हिरण का बच्चा,
3: ओके ओके सॉरी सॉरी, हिरण का बच्चा,
4: घोड़ा दौड़ा टुकड़ू दू,
3: घोड़ा दौड़ा टुकड़ू दू,
4: श्रीवास्तव बोले कुकड़ू को,
3: मिस्टर
4: श्रीवास्तव बहुत अच्छा लगता है जब बाप कोई बच्चा बनने की कोशिश करता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आपकी वाइफ ने मुझे नंबर दिया था, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया है।
3: यार ये कोई सुनेगा
4: सर, ये सर ये सब सुन चुके हैं। अब प्यार से एक बार बोल दीजिए, इसको रिपीट कर लीजिएगा, बार बार बोलिएगा कुकड़ू को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes comes the Naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
9: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
10: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
9: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
11: Oak Tree Road लो बेस्ट डायमंड ज्वेलरी कोसम सर्च इस्तनर कृष्णा ज्वेलर्स मी एक्सक्लूसिव डायमंड स्टोर।
12: टॉप क्वालिटी नेचुरल सर्टिफाइड डायमंड्स, GIA सॉलिटेयर्स, नेकलेसेस, रिंग्स, मरियू स्टनिंग पेंडेंट्स, कृष्णा ज्वेलर्स, Oak Tree Road, Ezelin।
13: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
14: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
13: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
15: Tera kya hoga, Kalia?
16: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
15: Ab mirchi kha.
17: Radio Mirchi, it's hot.

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और हैरत से नहीं, एनर्जी से भर गया था ये ट्रैक, क्योंकि यार ये गाना फ्रॉम द एल्बम अनजाना अनजानी सुन के यार मूड ना एकदम ऑटो फ्रेश हो जाता था। लकी अली की वॉइस विशाल शेखर के बीट मैजिक क्रिएट कर देता था। और जी हाँ, हैरत वो गाना था जो रणबीर के जो बाइक राइड या कार राइड के सीन्स थे उन सबको भुलाकर अपने इनर ट्रैवलर को जगाने के लिए बनाया गया था। मतलब अगर वेगस में ड्राइव कर रहे हो तो मन में हैरत गाना तो बजता ही था। तो चलिए आज इस गाने का टेम्पो फील करते हैं। गाड़ी फुल स्पीड में मत चलाना क्योंकि हम अभी भी न्यू जर्सी में हैं, लेकिन गाने का तो फील कर सकते हैं बॉस। तो चलिए सुनते हैं हैरत फ्रॉम द एल्बम अनजाना अनजानी राइट हियर ऑन मिर्ची। वैसे आप भी बता सकते हो विच इज योर फेवरेट एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए हैरत राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए। 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में। सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
1: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
5: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
4: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
7: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
7: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
6: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू हिजलिन।
8: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुरा कर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
9: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
10: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
11: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
12: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
11: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
13: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
11: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
14: एक ही होता है।
11: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Tickets 4:30 PM. Mirchi Time Check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Sham Shandar. Let's do not donkey, have a funky time.
2: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, बातें हो रही है एक ऐसे एल्बम की जिसका हर एक गाना यार हिट पे हिट था। और इस एल्बम का जो टाइटल ट्रैक था उसने यार सिर्फ मूवी में ही नहीं बल्कि पूरे जनरेशन का मूड बना दिया था। जी हाँ, बात हो रही है अनजाना अनजानी की। और अनजाना अनजानी की जो कहानी है, जो विशाल ददलानी और शिल्पा राव के डुएट में गाया गया था, जिसके लिरिक्स में ही ना वो एक वंडरलस्ट फील था कि कौन जाने कौन हूँ मैं, मतलब इंस्टेंट कनेक्ट था। और सबके लाइफ में जो ये अपनी जो भी अपनी राह ढूंढ रहे होते हैं ना, उनके लिए एकदम हिटिंग सॉन्ग था ये। वैसे गाना सुन के तो लगता था जैसे जिंदगी ना एक ट्रिप है, मतलब डेस्टिनेशन नहीं। तो अगर आपको भी ऐसा ही गाना जर्नी वाला पसंद है तो मुझे जरूर बताना विच इज योर फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम योर फेवरेट एल्बम। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHR। और फिलहाल बजाते हैं ये अनजान अनजानी का सुपर डुपर हिट गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हां, 2010 में आई थी ये एल्बम अनजाना अनजानी, कंपोज्ड बाय विशाल शेखर। और इसका एक ऐसा गाना आया था जिसमें यार मतलब दिल तोड़ दिया या फिर यादें छोड़ गई हो ना, बस वो गाना सुन लो हर फीलिंग डबल हो जाती थी। मोहित चौहान की आवाज़ में और शेखर रवजियानी ने भी जो इमोशन दिया था इस ट्रैक में, ओहो किसी थेरेपी से ना कम नहीं था। क्योंकि इस गाने में सूफी टच भी था, मॉडर्न मेलोडी भी थी, जैसे कि दर्द और सुकून बिल्कुल एक साथ मिल गए हो। तो दोस्तों इतना प्यारा गाना इस एल्बम का, वैसे तो यार इस एल्बम के हर एक गाने अमेजिंग थे। तो आपको कौन सा गाना इस एल्बम का सबसे ज़्यादा पसंद है, टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल ये जो ब्रेकअप रिकवरी वाला गाना है ना, सुन लेते हैं यार विशाल शेखर की कंपोजिशन राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: प्यार में चमको जैसे चुगनो।
1: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स।
2: शाम शानदार, लेट्स डू नॉटंकी, हैव अ फंकी टाइम।
3: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और आज एक ऐसे एल्बम के बारे में बात हो रही है जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। जी हाँ, अनजाना अनजानी 2010 में रिलीज हुआ वो एल्बम। और आज की जो रिक्वेस्ट आई, सॉन्ग रिक्वेस्ट, दैट इज फॉर द सॉन्ग तुमसे ही तुमसे। और ये जो रिक्वेस्ट आई है, दैट इज फ्रॉम रिया, जो कि रहती है एडिसन में। और रिया जी कहती है कि यार ये गाना जो तुमसे ही तुमसे गाना है, प्लीज सिद्धि जी बजा देना, क्योंकि ये मूड रोमांटिक है और वेदर भी रोमांटिक है, तो ऐसे माहौल में ये गाना तो बजना चाहिए। तो जी हाँ रिया जी, एब्सोल्युटली करेक्ट। दोस्तों वैसे क्या आपको 2010 का वक्त याद है, जब अनजाना अनजानी एल्बम ने सबको होपलेस रोमांटिक ही बना दिया था। मतलब विशाल शेखर का मैजिक चला था और इतनी खूबसूरत सी आवाज है हर गाने में, विशाल की कहिए, शिल्पा राव की कहिए, रणबीर प्रियंका की केमिस्ट्री, ओ हो हो, मतलब तुमसे ही तुमसे एक बहुत ही सुंदर सा गाना है जहाँ हर नोट लगता है जैसे दिल से निकला हो। जैसे लॉन्ग ड्राइव पे सनसेट के टाइम ये गाना बज जाए ना, तो बस दुनिया रुक जाए। और मुझे तो लगता है कि हर किसी के लाइफ में एक तुमसे ही तुमसे मोमेंट जरूर होता है जहाँ सब कुछ एकदम ब्लर सा हो जाता है और बस वो एक इंसान दिखता है जो दिल में है। तो बताइए आपका तुमसे ही तुमसे मोमेंट कब आया था? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम जे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, या फिर इसी एल्बम का आपका फेवरेट गाना भी आप बता सकते हो। फिलहाल हम बजा रहे हैं तुमसे ही तुमसे, रिया जी के रिक्वेस्ट पर, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La vieja la murga. Mirchi, murga.
2: हेलो,
3: कुड आई स्पीक टू कोमल प्लीज?
2: स्पीकिंग
3: कोमल, हाय आई एम रवि. हमारी कंपनी ने एक्चुअली ईव टीजिंग को लेके दिल्ली में जो लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है, लड़कियों को परेशान करते हैं, उसके खिलाफ एक इनिशिएटिव शुरू किया है. तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपको खुद कोमल को ये लगता है कि दिल्ली में लड़कियों को छेड़ा जाता है, लड़कियाँ बहुत इनसिक्योर हैं?
2: लगता है क्या है, बिल्कुल ऐसा है.
3: ओके.
2: हम लोग निकल नहीं सकते हैं, हम लोग इनसिक्योर
3: हैं.
2: इधर से कमेंट पास होते हैं, उधर से बसेस में हमारा ट्रेवल करना मुश्किल है.
3: राइट.
2: इनफैक्ट मैं अपना एक केस बताना चाहती हूँ. मैं किसी काम से साकेत गई थी शाम को.
3: ओके.
2: मतलब थोड़ी रात सी हो गई थी.
3: हाँ.
2: तो वहाँ मुझे छेड़ा.
3: कितने बजे गई थी आप?
2: साढ़े दस बजे.
3: साढ़े दस बजे क्यों गई थी आप? साढ़े दस बजे
2: मेरे को एक काम था वहाँ पे.
3: किस तरह का काम पड़ गया था आपको साढ़े दस बजे, जो आपको इतनी हबड़तबड़ में अकेले जाना पड़ गया?
2: मुझे बड़ी जरूरी काम.
3: नहीं, कितना आपको मालूम है ईव टीजिंग को लेकर कितना हम परेशान है, लड़कियाँ छेड़ रही हैं. आप निकल गई साढ़े दस बजे वहाँ पे? आपको खुद को पता है आप क्या कर रही हैं?
2: एक सेकंड, आप तो गुस्से में हो.
3: नहीं, गुस्से में नहीं, गुस्से की बात मेरी बात सुनिए. आप लड़कों को बुरा कहती हैं. आप क्यों गई थी वहाँ पे साढ़े दस बजे?
2: एडवाइस,
3: खुद गुस्से में. आप क्यों गई साढ़े दस बजे?
2: आप हद से ज्यादा.
3: क्या बात कर रहे हैं?
2: मेरे को ईव टीजिंग कर रहे हैं.
3: ईव टीजिंग मैं आपको कर रहा हूँ? आप आगे बढ़ रही है बहुत ज्यादा. मैं एक इनिशिएटिव शुरू कर रहा हूँ.
2: नहीं कर सकते आप.
3: मैं एक इनिशिएटिव शुरू कर रहा हूँ जिसको लेके हम चाहते हैं कि लड़कियों की सुरक्षा, लड़कियों को कमेंट पास ना करें, लड़कियों
2: की सुरक्षा की सुरक्षा की
3: तरह की किस तरह की. नहीं, आप किस तरह की बात कर रही है? साढ़े दस बजे क्यों गई आप? सागे फोन रखिए आप, बेकार की बात. हेलो
2: हेलो,
3: कुड आई स्पीक टू कोमल? कोमल हाय, हम ईव टीजिंग को लेकर.
2: ओके ओके ओके
3: ओके ओके ओके ओके मेरी बात सुनिए. कोमल, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, पूरी दिल्ली आपको सुन रही है. मैंने मुर्गा बनाया है, छोटा सा मजाक किया था आपके साथ. आप साकेत क्यों कहीं नहीं साढ़े दस बजे?
2: हाँ जी, मैं गुस्सा दिलाया.
3: चलिए, मैं ठीक हो जाऊंगा. मैं कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ूंगा. मेरा मतलब मैं छेड़ता भी नहीं हूँ. मेरे साथ जरा हंस के बोल.
2: ओके, कुकड़ू कू.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
7: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन. Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
5: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
8: Kisi zamane mein maa haathon se ghisti, pyar se kootti, muskuraakar peesti, apne ghar ke aangan mein din bhar un masalon ko sehlaye, khushiyon ke swaad चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी. दीप, खाओ तो जानो.
9: इसलिन न्यू जर्सी. Yes, you heard that right. That's the brand new Joy Aruka's destination in the USA. Be among the first to celebrate our grand opening with an unbeatable inaugural offer of flat 30% off on baking charges. Shop before 19th July and receive assured gifts with every purchase. Visit us at 42 Marconi Avenue, Esalen, New Jersey and discover exquisite collections crafted for every celebration. Inaugural offer valid until 26th July 2026. TNT apply. Joy Aruka's, world's favorite jeweler.
10: तेरा क्या होगा कालिया?
11: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
10: अब मिर्ची खा.
12: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और चलिए आज की शाम में करते हैं थोड़ा रियल टॉक। जी हाँ यार, आजकल मार्केट ना हर वीक चेंज हो ही जा रहा है, कभी रेट्स ऊपर कभी नीचे, कभी सेंटिमेंट ही फ्लिप तो कभी इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा कि यार ड्राइव टाइम भी ना थोड़ा सा दर्द दे रहा है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता है कि मार्केट क्या कर रहा है, बल्कि ये होता है कि यार मेरा बजट क्या क्या अलाउ कर सकता है। स्पेशली अगर होम बाइंग के बारे में बात करूँ ना, तो स्मार्ट होम बाइंग ट्रेंड फॉलो करने से नहीं बल्कि नंबर्स को ढंग से समझने से होती है कि आप कितना कंफर्टेबली कोई भी नया घर अफोर्ड कर सकते हो और किस तरह प्लान कर सकते हो, स्पेशली ऐसी चेंजिंग सिचुएशन में भी। और इसी क्लैरिटी के लिए एक्सपर्ट एडवाइस देने के लिए आए हैं मेरे दोस्त बीच फ्रॉम लैंड मॉर्गेज। तो चलिए ऐसे डायनामिक मार्केट में बजट को कैसे स्मार्टली प्लान करें, सुनते हैं बीच से। ओवर टू यू बीच।
1: Good evening, Mitchell. This is your friend Bish from Lion Mortgage. Hope you all had a wonderful day at work. Temperatures are rising. U.S. markets mixed after cooler than expected CPI report. No change in the mortgage rates, what we had left yesterday. Mortgage underwriting criteria nationwide have eased up over the past few years with a particular focus on qualification, such as debt-to-income ratios, loan-to-value, credit scores. Remember, listeners, now you can buy your dream home with as little as 3% down payment. So once again, friends, buying your dream home, pre-approval is free, advice is free. Call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Buying your dream home, Lion Mortgage, 732-339-3155. Looking at the mortgage rates today, the 30-year fixed mortgage rate, 6.25%. 20-year fixed mortgage rate, 6.125%. 15-year fixed mortgage rate, 5.75%. Friends, you can always visit our user-friendly website at www.lionmtg.com. It is lionmtg.com. Many homeowners refinance because they want to get out of an adjustable rate mortgage. Folks, please call Lion Mortgage to explore options to refinance and save money on interest and closing cost. As you all know, debt consolidation is another goal for refinancing. If you have both a first mortgage and a home equity, combining the two mortgages into one fixed mortgage with a lower payment is also there. Lion Mortgage specializes in purchase loans, refinance loans. We offer conversion loans, FHA loans, jumbo loans. We also do DSCR loans. So once again, friends, buying a dream home or refinancing, don't hesitate to call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Lion Mortgage, 732-339-3155. With that, drive safe, everybody. Have a wonderful evening. Thank you.
2: This mortgage update is brought to you by Lion Mortgage.

0: बजट। मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए। 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में। सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
1: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chefs' recipes comes the Naan. Same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
5: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
6: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
3: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
9: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
10: Listener MA, back to back gana sunega.
11: Back to back gana sunega.
12: Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot. Yes.

0: It's 5:30 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Sham Shandar. Let's do not donkey have a funky time.
2: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और बात हो रही है 2010 के एल्बम की, अनजाना अनजानी के एल्बम की, जिसको कंपोज किया है विशाल और शेखर ने। और फिलहाल जो रिक्वेस्ट आई है दैट इज फ्रॉम राज, जो कि रहते हैं पिस्कैटवे में। और यार वो कहते हैं कि यार माहौल इतना अमेजिंग सा है, मौसम खूबसूरत सा है, तो थोड़ा अपबीट गाना चाहिए। जी हाँ, तो इसी के लिए आई फील गुड जरूर बजाइए। तो बस नाम ही काफ़ी है यार, मतलब आई फील गुड एक ऐसा गाना जो बजते ही लगता है कि दुनिया में ना स्ट्रेस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और रणबीर और प्रियंका की केयर फ्री केमिस्ट्री इन दिस मूवी अनजाना अनजानी, न्यूयॉर्क इन योर लाइट और विशाल ददलानी की वो रॉक स्टार एनर्जी, इस सॉन्ग को हर बीट में ऐसा लगता है कि बस लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स को भूल जाओ और चिल कर लो यार। तो चलिए आज बजाते हैं आई फील गुड फ्रॉम द वंडरफुल एल्बम ऑफ अनजाना अनजानी, जिसका हर एक गाना जबरदस्त है। वैसे आप भी मुझे बता सकते हो वो ऐसा कौन सा एल्बम है जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए राज की रिक्वेस्ट पर बजाते हैं आई फील गुड राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए डीप फूड्स चटनी। डीप, खाओ तो जानो।
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
5: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
6: अब मिर्ची खा।
8: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

गरबा का मूड हो या ऑफिस का बोर्डम, दीप गुजराती स्नैक्स की बीट ही काफी है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और सूरती स्पेशल तीखा मिक्स भटानी कानी एवरी बाइट में लगता है दैट यू आर डूइंग डांडिया एंड दैट टू विद फ्लेवर्स स्पाइसी क्रंची और देसी फन या जिसकी गूंज ना मिर्ची सिद्धि के स्टूडियो तक भी पहुंच जाती है। तो आज ही ट्राई कीजिए दीप गुजराती स्नैक्स, सूरत से आया फ्लेवर का फेस्टिवल, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्तों, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो पहली बार सुनते ही मूड हल्का कर देते हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और ऐसा ही फील आ रहा है एक नए गाने से, मस्करा फ्रॉम द मूवी मैं वापस आऊंगा। बस इसका म्यूजिक दिया है AR रहमान ने, लिरिक्स लिखे हैं इरशाद कामिल ने और गाने को आवाज दी है वेदांग रैना और निलंजना घोष ने। ऑनेस्टली इस गाने में ना कोई हैवी हार्ट ब्रेक, ना कोई इंटेंस ड्रामा है, इसका चार्म ही उसकी प्लेफुलनेस है। थोड़ी सी शरारत, थोड़ा फ्लर्टिंग वाला कॉन्फिडेंस और वो फीलिंग जब किसी की एक स्माइल ना पूरे दिन को अमेजिंग बना देती है। और जी हाँ, प्लेफुलनेस है। थोड़ी सी शरारत, थोड़ा फ्लर्टिंग वाला कॉन्फिडेंस और वो फीलिंग जब किसी की एक स्माइल ना पूरे दिन को अमेजिंग बना देती है। और जी हाँ, मस्कर

ग्रैंड मेलोडीज या सोलफुल ट्रैक्स याद आते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने गाने को बहुत ही लाइट और ब्रीजी रखा है। इरशाद कामिल के लिरिक्स और भी ज़्यादा मस्ती और प्यारा बना देते हैं इस गाने को। और सबसे खूबसूरत बात तो ये है कि गाना खुद को बहुत सीरियसली लेता ही नहीं है। तो आजकल के इतने सारे रोमांटिक ट्रैक है जो यार इमोशंस में बिल्कुल डुबा देते हैं, लेकिन मस्करा में एक अलग ही फ्रेशनेस है। ऐसा गाना जो ड्राइव पर भी चले, फ्रेंड्स के साथ भी चले और रैंडम स्माइल भी दे जाए। तो ऑनेस्टली दोस्तों, कभी कभी ना प्लेलिस्ट को भी ऐसे गाने की जरूरत होती है जो दिल को हैवी नहीं, हैप्पी कर दे। तो आज आपके लिए ये गाना बजाते हैं, लेकिन आप भी मुझे बताइए व्हिच इज दैट सॉन्ग जिसको सुनते ही आपका मूड ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI और बजाते हैं वो गाने यहां पर। फिलहाल आपके लिए मस्कारा फ्रॉम मैं वापस आऊंगा राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: भाई साहब, आपकी दुकान से कल एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन ले गया था, याद है आपको?
1: हाँ जी।
0: आपकी दुकान से एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन लेके गया था मैं कल।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो ये यार, ये ड्रिल मशीन कैसे दिए? ये बहुत आवाज कर रही है, एक सेकंड रुको।
1: भाई ड्रिल मशीन तो आवाज तो करेगी यार।
0: एक सेकंड यार, आवाज करेगी। आप ये क्या, बंद कर इसको, बंद कर रमेश, इसे बंद कर दे यार। आप मरवाओगे, ड्रिल मशीन आवाज करेगी, यहाँ सारे जाग जाएंगे तिजोरी खुलने से पहले।
1: मैं
0: आपको यही बता रहा हूँ, ये ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे जो मैं ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना, ये जिस कोठी में आया हुआ हूँ अभी, इनकी तिजोरी खुली भी नहीं है। मैं तो ये ड्रिल मशीन यार, इसको बंद कर दे रमेश, बंद कर दे। भाई साहब, ये तिजोरी मैं खोल रहा हूँ, ये आवाज बहुत कर रही है यार।
1: क्या कह रहे हो, तिजोरी ड्रिल मशीन कर क्या रहे हो आप?
0: इनके घर की चोरी कर रहा हूँ, खोपड़े में बात नहीं आती क्या तेरे यार? मुझे भसवाएगा तू?
1: तो ड्रिल मशीन हमारे लेके तो चोरी करने गया।
0: एक तो आवाज इतनी दी है तूने, ड्रिल मशीन के सारे जाग जाएंगे यार।
1: चोरी करने ले गया,
0: तुमने पहले क्यों नहीं बताया?
1: यहाँ पे ड्रिल मशीन से है कौन? तू खुद चोरी कर रहा है, मुझे फसवाएगा।
0: मेरी बात सुन,
1: माँ का तू मुझे मरवाएगा, मुझे फोन कर दिया।
0: मेरी बात सुन।
1: हेलो
0: यार, कमाल है, आप तो मेरी रोजी फिर रात मार रहे हो।
2: सर मेरी बात सुनिए, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपकी दुकान का नंबर मुझे किसी ने दिया था, आप रेडियो मिर्ची में हैं, सब आपको सुन रहे हैं, आपके साथ मजाक किया है, मुर्गा बना दिया आपका।
1: कहाँ से बोल रहे भैया?
2: रेडियो मिर्ची से सर, आपके साथ मजाक किया है मैंने। जरा हंस के मेरे साथ एक बार।
0: अब ठीक है।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक। दिस गोल्ड अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स, किंगडम ऑफ ज्वेल्स, वेयर ट्रेडिशन मीट्स स्टाइल।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए डीप फूड्स चटनी। डीप, खाओ तो जानो।
7: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
8: ఓక్ ట్రీ రోడ్ లో బెస్ట్ డైమండ్ జ్యువెలరీ కోసం సర్చ్ చేస్తున్నారా? కృష్ణా జ్యువెలర్స్ మీ ఎక్స్క్లూజివ్ డైమండ్ స్టోర్.
9: టాప్ క్వాలిటీ నేచురల్ సర్టిఫైడ్ డైమండ్స్, GIA సాలిటేర్స్, నెక్లెసెస్, రింగ్స్ మరియు స్టన్నింగ్ పెండెంట్స్. కృష్ణా జ్యువెలర్స్, ఓక్ ట్రీ రోడ్, ఈసలిన్.
10: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
11: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें, मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
10: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
11: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
10: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
12: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
13: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
14: Goalie goes down the ground. Goalie goes out of the ground.
13: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
15: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
13: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
16: एक ही होता है।
13: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

यार बॉलीवुड की एक अच्छी बात यह है कि सिंगर्स का काम ना कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता। शाम शानदार लाइक सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और आज भी एक अच्छी आवाज सीधा दिल तक पहुंच ही जाती है, चाहे रोमांटिक हो, सुकून भरी हो या थोड़ी इंट्रोस्पेक्टिव। आज के गाने लाउड होने से भी ज्यादा लास्टिंग होने पे फोकस कर रहे हैं और ऑनेस्टली ये फेज काफी रिफ्रेशिंग लगता है। तो आप भी बताना कि आपको बॉलीवुड सॉन्ग में सबसे ज्यादा क्या कनेक्ट करता है, लिरिक्स या वॉइस? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल एक बहुत ही खूबसूरत आवाज का ये खूबसूरत सा गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: आ जाओ आ जाओ, आगरा वाले आगरा वाले, दिल्ली वाले दिल्ली वाले, मुंबई वाले चेन्नई वाले, इंदौर वाले, जो भी जहाँ से भी है, सबके लिए डिस्काउंट है डिस्काउंट।
1: शोर स्ट्रीट वाला है पर ऑफर एलीट वाला है, रास्ता चाहे जो हो, मंजिल है विरानी ज्वेलर्स, क्योंकि वहाँ मिल रहा है 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी।
2: विजिट viranijewelers.com, गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल फ्रॉम 4 जुलाई इंडिपेंडेंस डे टिल ऑगस्ट 15th इंडिपेंडेंस डे, सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
3: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Inefficient,
7: very complex,
8: clumsy और
9: confusion ही confusion.
10: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ, अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
11: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
12: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
13: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
14: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the naan. The same traditional taste, flavor and freshness guaranteed. Deep cow to jano.
15: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.

0: At 6:30 p.m., Mirchi Time Check, RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price.
1: Sham Shanda, let's do not donkey, have a funky time.
2: हर प्यार की एक किस्मत होती है दोस्तों, कुछ मिल जाते हैं और कुछ गाने बन जाते हैं। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और तुम मेरे ना हुए ना सही। ये वो गाना है जो सुनकर ना सिर्फ दिल भर ही नहीं आता, झूम भी उठ जाता है। मतलब थामा का ये जो नया ट्रैक है रश्मिका मदाना के थ्रू, एक आग भी है और एक आंसू भी। सचिन जिगर का म्यूजिक, अमिताभ भट्टाचार्य के जो लिरिक्स है, मिलकर ऐसा कमाल करते हैं कि मान लो यार प्यार और पेन एक साथ बैठ चुके हो चाय के कप के साथ। मजे की बात तो ये है कि शूटिंग के दौरान रश्मिका ने सिर्फ वन टेक में ये डांस किया था और पूरे के पूरे क्रू ने क्लैप करके उनकी तारीफ की थी, क्योंकि वो सीन प्योर हार्ट ब्रेक का रियल मोमेंट बन गया था। वैसे अगर आपने ये गाना सुना है तो आपको ये गाना कैसा लगा, टेल मी ऑन इंस्टेंट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और अगर नहीं सुना है तो चलिए बजाते हैं आपके लिए, राइट, यू ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Oh no!
3: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
1: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
1: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
1: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन.
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
5: अब मिर्ची खा.
7: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

कुछ खास गाने और उनके कुछ खास किस्से शाम शानदार लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और गेरुआ ये गाना सुनते ही ना एक अलग ही ड्रीमी सी फीलिंग आ जाती है। पर एक बहुत ही अमेजिंग सा फन फैक्ट है इस गाने का कि यार अरिजीत सिंह ने जब ये गाना रिकॉर्ड किया था तो बस एक टेक में रिकॉर्ड किया था। अब ऐसे तो कई सारे गाने हैं जो एक टेक में रिकॉर्ड किए जाते हैं, लेकिन ये गाना उसमें भी खास है क्योंकि रिकॉर्डिंग के टाइम पे ना बस डायरेक्टर ने बोल दिया था कि वार्म अप के लिए एक रफ टेक ले लो, मतलब एक रिहर्सल टेक ले लो। और जब वो रफ टेक अरिजीत सिंह ने गाया तो वही बन गया फाइनल मास्टर टेक। और टीम ने कहा कि यार ये आवाज ही इतनी अमेजिंग है, इतना एफर्टलेस डेप्थ है इस आवाज में, इस टेक में, कि इसी टेक को फाइनल करते हैं। तो बस फाइनल टेक कभी किया ही नहीं और यही टेक फाइनल बन चुका था। तो मतलब बोलते हैं ना कभी कभी प्रैक्टिस भी परफेक्शन बन जाती है, तो अरिजीत जी के साथ कुछ ऐसा ही होता है। और शायद इसलिए ही इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सिंगर्स ऑफ इंडियन सिनेमा। वैसे आपका फेवरेट अरिजीत सिंह का गाना कौन सा, टेल मी ऑन इंस्टेंट आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल सुनते हैं ये वन टेक सॉन्ग ऑफ अरिजीत सिंह, गेरुआ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हुआ झुमका
1: शाम शानदार लेट्स डू नॉट डंकी हैव अ फंकी टाइम।
2: दोस्तों कभी नोटिस किया है कि हर दिन ना अर्जेंसी नहीं होती। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और आज का दिन ना उन्हीं में से है जहां सब कुछ अभी नहीं थोड़ी देर बाद कैटेगरी में लगता है और ये परफेक्टली ओके है क्योंकि आज हर किसी को ना हीरो बनने की जरूरत नहीं, कभी कभार बस प्रेजेंट रहना ही काफी होता है। तो अगर आज आपने भी अपने आप को थोड़ा स्लो चलने दिया है तो समझो कि आपने भी एक बहुत ही सही डिसीजन लिया है। तो आप भी जरूर बताना कि आज आपने किस चीज को स्लो रखा है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि यार मैंने अपनी प्लेलिस्ट को थोड़ा सा धीमा कर दिया है क्योंकि ये जो शाम है वो बहुत ही सुहानी है, तो यार हर बार हाई बीट्स अर्जेंट बीट्स की जरूरत नहीं है। तो चलिए ये धीमा सा गाना सुनते हैं राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iscaba la puscaba la sacabana.
2: ¡Rámbala!
1: ¡Murga, murga! ¡La vieja la murga!
2: ¡Mirchi, murga! ¡Acá!
3: हेलो
4: गुड इवनिंग मिस्टर श्रीवास्तव, मैं मॉडर्न स्कूल से बोल रहा हूँ, आपके बेटे के स्कूल से। हाउ आर यू?
3: आई एम वेरी फाइन, थैंक यू।
4: अतुल वैसे पढ़ाई लिखाई में यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिल्कुल आगे नहीं है।
3: आई नो, वो खेल में कुछ ऐसा है नहीं खास ज्यादा।
4: हाँ, नहीं, वही मैं आपको बताना चाह रहा था। अच्छा मिस्टर श्रीवास्तव, क्योंकि हम 26 जनवरी पे एक फंक्शन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पेरेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करें। पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा परफॉर्म वो करेंगे उसके मार्क्स बच्चे को दिए जाएंगे। यू नो,
3: परफॉर्म मतलब क्या, परफॉर्म क्या करना होगा हमको?
4: कुछ भी ऐसा करिएगा जो कि बच्चों की चीज हो। आप प्लीज आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करिए। आप आओ मिलो शिलो शालो करिए ना यहाँ पे आके स्टेज पे।
3: मतलब ये गेम है क्या ये?
4: आओ मिलो शिलो शालो,
3: पेरेंट्स को परफॉर्म करना होगा?
4: वो सिर्फ आप ही को परफॉर्म करना होगा, आप ही को ये पूरा बोलना होगा, आओ मिलो शिलो शालो। एक्चुअली प्रॉब्लम भी है, हमारे पास चार ही थे उसमें से यही बचा है। आओ मिलो शिलो शालो अगर आप ले सकते हैं तो आप इसे प्लीज परफॉर्म कर लीजिए ताकि उसके मार्क्स अच्छे आए। राइट,
3: पूरी कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट।
4: देखिए शुरू ऐसे होता है, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। राइट, और इसमें बीच में ना क्लैप करना होता है इस तरह। आओ मिलो,
3: आओ मिलो
4: शिलो शालो,
3: शालो
4: कच्चा धागा,
3: कच्चा धागा
4: रेस लगा लो,
3: रेस लगा लो,
4: दस पत्ते तोड़े,
3: दस पत्ते तोड़े,
4: एक पत्ता कच्चा,
3: एक पत्ता कच्चा।
4: इसको ना प्रैक्टिस करिएगा, आप तेज से बोलेंगे, दस पत्ते तोड़े,
3: तोड़े
4: या मिस्टर श्रीवास्तव, दस पत्ते तोड़े, दस पत्ते तोड़े,
3: दस दस दस पत्ते तोड़े,
4: हिरण का बच्चा, हिरण का बच्चा, सब हिरण का बच्चा,
3: ओके ओके सॉरी सॉरी, हिरण का बच्चा,
4: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू,
3: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू,
4: श्रीवास्तव बोले कुकड़ू को, मिस्टर श्रीवास्तव बहुत अच्छा लगता है जब बाप कोई बच्चा बनने की कोशिश करता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, आपकी वाइफ ने मुझे नंबर दिया था, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया है।
3: यार ये कुछ सुनेगा
4: तो सर, ये सर ये सब सुन चुके हैं, अब प्यार से एक बार बोल दीजिए, इसको रिपीट कर लीजिएगा, बार बार बोलिएगा कुकड़ू को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: जय गुरुदेव गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोपे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेह पूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ। शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7323578200। जय गुरुदेव।
1: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
3: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
4: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए Lion Mortgage, the king of mortgage industry.
5: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
1: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
6: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.
7: Listener mein back to back gana sunega. Back to back gana sunega.
8: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

इंसानों के मूड स्विंग सुने थे, लेकिन न्यू जर्सी के वेदर का अपना ही अलग मूड स्विंग है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। क्योंकि यार एक दिन लगता है कि स्प्रिंग ऑफिशियली आ चुका है, तो नेक्स्ट दिन लगता है कि नहीं नहीं अभी पिक्चर बाकी है। क्योंकि कभी जैकेट निकाली जाती है, कभी जैकेट गाड़ी में ही छोड़ दी जाती है। सुबह वेदर बहुत ही मस्त होता है, तो शाम तक इतनी हवा बहती है, इतनी हवा बहती है कि लगता है कि यार ये मौसम को भी ना फुल मूड स्विंग हो रहा है। वैसे सच कहूँ तो न्यू जर्सी का वेदर ना कभी कभी उस दोस्त जैसा लगता है जो लास्ट मिनट में प्लान चेंज कर देता है। आप सोचोगे कि यार अभी अच्छा खासा वेदर चल रहा है, एक बहुत ही अमेजिंग सी चाय पी जाए, तब तक वेदर का मूड ही बदल जाता है। पर फन तो यह है दोस्तों कि अब इस अप एंड डाउन में स्प्रिंग की झलक तो थोड़ी बहुत दिख रही है। ट्रीज आर गेटिंग ग्रीनर, हवा थोड़ी फ्रेंडलियर हो रही है और दिल बोल रहा है कि हाँ यार आउटडोर सीजन तो आ चुका है। तो चलिए इसी के साथ, वेदर जितना भी अनप्रेडिक्टेबल हो, हम हमारे मूड को प्रेडिक्टेबल बना सकते हैं और हमेशा ही शानदार बना सकते हैं विद दिस सॉन्ग्स ऑन रेडियो मिर्ची। तो दोस्तों बस उसी के लिए आपके लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ताजा खबर, ताजा खबर, देसी न्यूज, विदेशी न्यूज, पड़ोसी की न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज ले लो।
1: शोर स्ट्रीट वाला है पर ऑफर एलीट वाला है, क्योंकि सबसे बड़ी खबर है विरानी ज्वेलर्स स्पेशल फ्रीडम सेल। पुराना गोल्ड लाओ और 100% एक्सचेंज वैल्यू ले जाओ, नो लॉस ओनली प्रॉफिट।
2: विजिट viranijewelers.com, गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल फ्रॉम 4 जुलाई इंडिपेंडेंस डे टिल ऑगस्ट 15th इंडिपेंडेंस डे, सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
3: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। It's hot.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
7: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
7: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
6: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
8: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस, रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।
9: Honey, it's 11 p.m., our bedtime. Where are you?
10: I am not going to bed with you ever again.
9: But why? What did I do?
10: That bed is horrible. It's outdated and when we are on it, it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
9: Oh, honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
10: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
9: Yes, yes, yes. Yes, come soon. Honey!
10: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
9: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
5: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
11: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
12: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
13: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
12: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
14: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
12: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
15: एक ही होता है।
12: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: at 7:30 p.m. Mirchi Time Check, RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price.
1: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
2: दोस्तों ओटीटी का भी ना एक हिडन बेनिफिट है डिस्कवरीज। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप बस रैंडम स्क्रॉल कर रहे होते हो और एक ऐसा शो मिल जाता है जिसका नाम पहले कभी नहीं सुना होता, और फिर वो शो इतना एंगेजिंग होता है कि सडनली आप उसके फैन बन जाते हो। और पहले एंटरटेनमेंट लिमिटेड था, जो थिएटर्स पे आया वही देखो, अब दुनिया भर की स्टोरीज एक क्लिक पे अवेलेबल है। और शायद इसीलिए आजकल कॉन्वर्सेशंस भी इंटरेस्टिंग हो गई है, कोरियन शोज, स्पैनिश थ्रिलर्स, बॉलीवुड ड्रामास, सब एक ही प्लेलिस्ट में। तो आप भी बताना कि आपने लास्ट कौन सा शो देखा। टेल मी ऑनेस्ट एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
5: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और देखते ही देखते ये शाम भी ढलने आ चुकी है और हमारे भी जाने का वक्त आ चुका है। लेकिन दोस्तों, आपके साथ शाम शानदार में अलग अलग धमाकेदार गाने बजाने का जो मज़ा है, उसे मैं मिस नहीं करने वाली। इसलिए कल फिर से आपसे मिलने आऊँगी फ्रॉम 4 to 8 PM EST। और आज के लिए आप कहीं ना जाइए, क्योंकि यार प्यार के जो अनोखे फंडे हैं वो आपको समझाने आ रही है रोशी। तो कहीं ना जाइए, जमे रहिए, बने रहिए राइट हियर ऑन मिर्ची। और आपके जो सॉन्ग रिक्वेस्ट है वो मुझे सेंड करते रहिए ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल @RJMirchiSiddhi SIDDHI ओनली ऑन इंस्टा। और आपके लिए ये अगला तड़कता फड़कता गाना जाते जाते राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: out of 10.
1: क्यों नहीं चाहिए? चल
0: ओके देन. भरे कलब में रह जाएगी बिल्लो फिर कल ली तू. कौन संभालेगा तुझको जब हो जाएगी.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: मैंने रिसेंटली एक चीज रियलाइज की. इस दुनिया में दो सबसे फेमस फ्रेजेस हैं. नंबर वन, आई लव यू. नंबर टू, मेड इन चाइना. दोनों की गारंटी नहीं, दोनों की वारंटी नहीं, लेकिन वी स्टिल गो अहेड एंड इंडल्ज इन बोथ दीज थिंग्स, प्यार और चाइनीज माल. अगर आपने भी जिंदगी में किसी से प्यार कर लिया नोइंग फुली वेल कि ये रिलेशनशिप कहीं जाने वाला नहीं है, देन आई वॉन्ट टू नो योर स्टोरी मॉर्निंग ग्लोरी. एंड टू डू दैट, आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है RocHIE. सो गो अहेड एंड डू व्हाट यू आर सो गुड एट डूइंग, लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.